आदाब समीन, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम में 288 आर्थिक मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्स के अलावा FM 103.5 MHz पर। समीन आज बुधवार है, शक्सवंत 1948 के वैसाख महीने की 16 तारीख मुताबिक 6 मई 2026 ईस्वी। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ईशो आकाशवाणी श्रीनगर बीटीपी वलाव एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन पेश खिदमत प्रोग्राम सुबुगाही।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम सुबुगाही हेत चीज तुहंदिस खिदमतस अंदर हाजिर। सामिन मोहतरम, कुरान करीमस अंदर चो अल्लाह ताला सुंद इरशाद जील तो ही ब्रोकन कुरान करीम च तिलावत ही करन तुह रूजो खामोश कन दिथ बूजो ताकि तुह पे ही रहम कर। प्रोग्राम के अजक शुमार आगाज तरह हसब दस्तूर कुरान करीम चन कैंसन आयात मुबारक हज तिलावत सलि बोजो कन दिथ ताकि अस पे सपद अल्लाह ताला सुंद रहम।

0: सेमीकंडक्टर परियोजने अनुमोदिते।
1: दो नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो एलईडी प्रदर्शन सौविध्यम अंतर्भवति। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोपि स्वीकृतः। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 29/56 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पदात् स्वत्याग पत्र प्रदानाय निराकृतवती। तस्याः अनुसारं मतानि बलात् लुण्ठितानि, मतदान प्रक्रियायां च कपटम् अभवत्। पश्चिम बंगस्य निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इत्यस्याः व्याख्यायाः प्रतिक्रियारूपेण भाजपेति दलेन उक्तं यत् भारतं लोकतन्त्रमस्ति तथा च सर्वदा तस्य सम्मानं करणीयम्। श्री संबित पात्रा अवदत् यत् एतत् भाजपेति दलस्य उपरि आक्रमणं नास्ति, अपितु लोकतन्त्रस्य संविधानस्य च उपरि आक्रमणमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् 8 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोः मध्ये हैदराबादे स्पर्धा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल

0: के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेरा फेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था। रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार अनुसूची में ये सूचीबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityananda Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the Government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the visiting dignitary. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. We have a report.
2: President of Vietnam Tho Lam will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. He will pay tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. India and Vietnam share historical and civilizational ties which have steadily deepened over the years. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Election Commission EC has issued a notification for the constitution of a new assembly in West Bengal following the completion of the electoral process in the state. The notification has been sent to the Governor of West Bengal, formally marking the end of the election cycle and setting the stage for the formation of a new government. A senior EC official said the issuance of notification is a key constitutional step after the declaration of results. With this, the process of constituting the new assembly in West Bengal is complete from the Commission's end. Meanwhile, the Election Commission of India has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any

0: दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
1: पर क्या कर सकते हैं?
0: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
2: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस। 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए एडमिशंस ओपन है। अप्लाइड जियोलॉजी, अरबिक, BA LLB, बॉटनी, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टडीज, हिंदी, होम साइंस, कश्मीरी, लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पर्शियन, फिजिक्स, संस्कृत और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में। साथ ही 4-year UG प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। डिजाइन योर ओन डिग्री, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 7 मई तक। अप्लाई नाउ। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.kashmiruniversity.net। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेपिंग लीडर्स ऑफ टुमारो।
4: जोर अपने सामीन के लिए आज भी हम मुख्तलिफ मौजूआत की सौगात लेकर हाजिर हैं।
5: जी हाँ, आज बात होगी तारीख में आज के दिन के हवाले से, मौसम और हाईवे की, और साथ ही बात होगी कश्मीर में तैयार होने वाले मेवों में से एक मेवे की।
4: जी, इन सब पे तो बात होगी ही, साथ ही आप सुन पाएंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम पयाम सुबह, जो 11:30 तक जारी रहेगा।
6: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयाम सुबह।
7: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयाम सुबह,
6: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
7: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयाम सुबह।
6: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
7: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयाम सुबह।
8: सुनो सजना,
7: पयाम सुबह।
5: पयाम सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। तो आइए आज सबसे पहले डालते हैं एक नजर तारीख पर और देखते हैं आज के दिन कौन कौन से वाकयात रोनुमा हुए हैं।
4: जी, 6 मई को कई एक तारीखी वाकयात रोनुमा हुए हैं। आज के दिन 1529 को मुगल बादशाह बाबर ने गागरा की लड़ाई जीती, जिसमें उन्होंने अफगान फौज को शिकस्त दी थी। 1882 में अमरीकी कांग्रेस ने चीनी बेदखली यानी चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट मंजूर किया, और 6 मई 1899 में आज ही के दिन पेरिस फ्रांस में एफिल टावर आवाम के लिए खोल दिया गया।
5: 1937 में जर्मनी का हवाई जहाज हिंडनबर्ग जर्मनी में लैंडिंग के दौरान आग लगने से तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 36 अफराद की मौत वाकई हुई। 6 मई 1942 को दूसरी जंग अजीम के दौरान फिलीपींस में आखिरी अमरीकी फौजी ने हथियार डाल दिए।
4: जी, 6 मई 1954 को रॉजर बैनिस्टर ऑक्सफर्ड इंग्लैंड में 4 मिनट से कम वक्त में 1 मील दौड़ने वाले पहले शख्स बने, जबकि 2023 में आज ही के दिन बर्तानिया में किंग चार्ल्स सोम और कैमिला की ताजपोशी हुई।
5: आज के दिन को आलमी सतह पर नो डाइट डे के तौर पर भी मनाया जाता है। आज ही अमेरिका में कौमी नर्सों का दिन यानी नेशनल नर्सेस डे और साथ ही आलमी सतह पर वर्ल्ड कार्निवोरस प्लांट डे के तौर पर मनाया जाता है।
4: जी सामीन, ये था आज का दिन तारीख के आईने में। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो पयाम सुबह, हमारे साथ बनी रही है।

0: डॉक्टर जहूर, हमारे यहाँ मौसम में बेहतरी और गर्मी में इजाफे के साथ ही बहुत सारे लोग सैर व तफरी के लिए मुख्तलिफ सियाहती मकामात, बागात और पार्कों का रुख करते हैं।
1: जी, ट्यूलिप गार्डन हो, मुगल बागात या कोई पार्क, कई लोग इन जगहों पर जाकर कुछ वक्त गुजारते हैं और इन जगहों की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं।
0: जी बिल्कुल, बाग बागात या खुली जगहों की सैर करना एक बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि जब आप खुली फजा में निकलते हैं तो ताज़ा ताज़ा हवा आपके जहन को सुकून बख्शती है। लेकिन ऐसे सियाहती मकामात या पब्लिक प्लेसेस पर जाने के कुछ आदाब होते हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए।
1: जी, इन जगहों पर हमें साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए।

0: समय प्रोग्राम पायाम सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं।
1: जी हाँ, समय हमारे प्रोग्रामों के हवाले से एक इतला संवाद करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताजा शुमारे की रिकॉर्डिंग आज दिन के 2 बजे से 3 बजे तक हो रही है। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से बचाओ। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदु किया है नामवर माहिर सरतान डॉक्टर शबनम बशीर को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिस से मौजू की मुनासिबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राब्ता करें। हमारा फोन नंबर है 01942483064। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा आज दिन के 2 बजे से 3 बजे तक और हमारा फोन नंबर है 01942483064। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से। सुनते रहिए पायाम सुबह।
2: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
3: माहिरीन की आरा, तजुर्बात और रहनुमाई,
4: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
2: सेहत के मशवरे
5: ऑर्थोपेडिक कुन तकलीफ मज ब्रॉडली करेंगे क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स।
2: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
3: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
2: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह।
3: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह।
2: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
0: तो जरूर अब वक्त हो चला है अपने सुनने वालों को उस मेवे के हवाले से जानकारी देने का जो हमारे यहाँ सबसे पहले तैयार होता है।
1: जी हाँ, कश्मीर में यूं तो कई मेवे साल भर दस्तियाब रहते हैं, लेकिन जो मेवा सबसे पहले तैयार होकर मार्केट में दस्तियाब होता है वो है शहतूत की शक्ल में जैसा सुर्ख रंग का रसीला मेवा स्ट्रॉबेरी।
0: जी हाँ सामीन, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा मेवा है जिसमें विटामिन सी की भरपूर मकदार मौजूद होती है। ये एक ऐसा सेहत बख्श मेवा है जो दिल के मरीजों के साथ साथ शुगर के पेशेंट्स के लिए भी काफी मुफीद माना जाता है।
1: स्ट्रॉबेरी के पौधे सितंबर, अक्टूबर या मार्च अप्रैल में लगाए जाते हैं और इनके फसल मार्च से लेकर मई जून तक तैयार हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का पौधा हर बार नहीं लगाना पड़ता बल्कि इनसे कई साल तक फसल हासिल होती है।
0: कश्मीर में खास तौर पर हजरतबल श्रीनगर का घूसू इलाका स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए मौजू माना जाता है, जबकि वादी के कुछ दीगर इलाकों में भी इस मेवे की काश्त होती है।
1: वादी में तकरीबन 86 हेक्टेयर रकबे पर स्ट्रॉबेरी की काश्त होती है। स्ट्रॉबेरी मेवे की सूरत में या दूध और शरबत में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है।
0: जी, स्ट्रॉबेरी की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए इसे जेली या जैम बनाकर रोटी या ब्रेड वगैरह के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो विटामिन सी से भरपूर ये मेवा इस्तेमाल करें और कुदरत के इस करिश्मे से लुत्फ अंदोज हो जाएं।

0: जी हाँ, प्रोग्राम पायम सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं।
1: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
2: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजमा।
3: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
4: सब्र रोशित सुलुन।
3: सुनते रहिए हमारी नशरियात
1: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
0: आइए समीन डालते हैं एक नजर आज के मौसम पे। आज 6 मई को वादी कश्मीर में मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है। दिन भर खुली धूप रहने का इम्कान है और दर्जे हरारत 23 से 24 डिग्री तक रह सकता है। आज गुरुवे आफ्ताब शाम 7:19 पर होगा और अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो हाईवे पर दो तरफा ट्रैफिक जारी है।

0: जी प्रोग्राम पयाम सबू आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समीन,
1: नशा एक ऐसी आदत है जो इंसान की सेहत, जहन और जिंदगी को तबाह कर देती है। इब्तिदा में ये वक्ति खुशी या दबाव से नजात का जरिया लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
0: जी जहूर, मनुष्यात का इस्तेमाल न सिर्फ एक फर्द को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसके खानदान और माशरे पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं।
1: समीन, वालदिन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, इनके दोस्तों और सरगर्मियों से आगाह रहें ताकि वो नशे जैसी बुराई से महफूज रह सकें। नशे से जहरी सुकून खत्म हो जाता है और वो अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा नशा इंसान को माली मुश्किलात और जराइम की तरफ भी ले जा सकता है, लेकिन उम्मीद हमेशा मौजूद रहे। अगर कोई शख्स नशे में मुबतला है तो वो इलाज, मशावरत और अपने प्यारों की मदद से इस आदत से नजात हासिल कर सकता है। माशरे पर फर्ज है कि अपने अफराद को हकीराना ना समझे बल्कि इनकी मदद करे और इन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे।
0: जी, एक खुशहाल और रोशन मुस्तकबिल की खातिर ड्रग्स से कीजिए इनकार और जिंदगी बनाइए

0: प्रोग्राम पैम सुबह आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम सुबह 11:30 बजे तक जारी रहेगा। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय सुबह के 7:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में कश्मीरी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।
1: ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:00 तो 5:30 सपद खबर नाम है चुस बह तजम्मुल अहमद गड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। मरकजन छे कप्स की पैदावारियत किस मिशनस बापत 5,700 करोड़ रुपये हंदिस रकमस मंजूरी दिचमस। काबीनान चे गुजरातस में सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग बापत मजीद ज यूनिट कायम करनस मंजूरी दिचमस। वजीर अजम नरेंद्र मोदी चे सऊदी अरब किस फुजैरा हस पे हमल मजम्मत करम अत हमलस मे त्रे भारतीय शहरी जख्मी गम तो मगरबी बंगाल तमिलनाडु पुडुचेरी तो केरलमस मे हुकूमत तश्कील दिन च सरगर्मी तेज सपजम। मरकजी काबीनान चे कपसी हिंदिस पैदावारियत किस मिशन कपास क्रांति बापत 5,760 करोड़ रुपये हिंदे रकम सान मंजूरी दिचम युत भारत किस कपसी हिंदिस सेक्टरस मज इन वल ठहर दूर करने इनस अलाव तरक्की मज कमी तो मयारस मुतलिक तश्वीश दूर करने हकन यत। नई दिल्ली मज वोन अकिस प्रेस ब्रीफिंग दौरान इतला तो नशरियात मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णवन जी मिशन च हुकूमत किस 5F विजन सूत हिशर थावान।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: वजीरन वोन जे अमुक मकसद चु ज्यादा पैदावार दिन वोल बियोल तैयार करुन युस बेमारिन तो केमिन क्रीलन सहित मजाहमत हेकि करित। अमे अलावा ये अमे मिशन सहित पैदावारस मुतलिक जदीद टेक्नोलॉजीन हुंद बड़िस पैमानस पेट इस्तेमाल करन तो यमन कोशन पेट ये रियासती सरकारो कृषि विज्ञान केंद्रों तो रियासतन हजो जरी यूनिवर्सिटियों दिस अमल करन। मरकजी काबीना दिस अखतुई भारत सेमी कंडक्टर मिशनस तहत मजीद दोन सेमी कंडक्टर प्रोजेक्टन ते मंजूरी यथ अंदर मुल्क गोडनुक

स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जू और जहाँ ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9 बजे। कश्मीरी मौसीकी पेश होगी सुबह 9:30 बजे। सूफी ख्यालात पर मामूली प्रोग्राम सूफी सदा रोज की तरह नश होगा सुबह 10 बजे। प्रोग्राम हजरत शेख बाहुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से मुतलिक है। तहरीर फयाज अहमद खुशगवा, रावी गुलशन बदरनी और शाहिदा अलवी। चक्र त्रोह पेश होगी सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सपहर 4:30 बजे। मारूफ सूफी शायर लाल आरगामी की बरसी के मौके पर इन्हीं का कलाम पेश होगा। सुबह 11:30 बजे कलाम लाल आरगामी पेश करेंगे फारूक अहमद गनाई और साथी। दोपहर 2:30 बजे यही कलाम पेश होगा, पेश करेंगे गुलाम नबी बुलबुल और साथी। सपहर 4:30 बजे कलाम लाल आरगामी पेश करेंगे बशीर अहमद यतू और साथी। बज़्म निस्वार रस्तों की 12:40 पर प्रोग्राम का मौजू है खानदर। मेहमान है मुजीबा अख्तर। एनसीआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश होगा।

हालात हाजरा की जानकारी प्रोग्राम शहरबीन में मिलेगी। शाम 7 बजे रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज नशर होगा। रात 8:30 पर जिला नामा नशर होगा। आज का जिला नामा जिला कुपवाड़ा से मुतलिक है। समय यह है तफसील हमारे आज नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात पेश होंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

0: और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में

0: रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो सीएनजी बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरहा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित

0: प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपए बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है एससी बोला गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है बंगाल में हिंसा ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है नया पैतरा भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है हारे नहीं हराए गए सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल असम केरलम तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समय निश आकाशवाणी श्रीनगर तो तुझे प्रोग्राम बोजान पयामे सुबह बशु सादत खान मैसेज जहूर अहमद तो सैन मुआविन अब्दुल क्यूम।

0: سمین یو اس کلام فیاض دلگم پیشس کران اعجاز احمد را سمین سری نگر چاز داپ اصل تشو پن دھوج تیاری کران تو بوزان آکاش ونی سری نگر
1: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग नए आहंग और नई लय के साथ
2: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिमा
3: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी
4: सब्र रोशित सुनो
3: सुनते रहिए हमारी नशरियात
1: दुनिया के किसी भी कोने में मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए

0: በሰሜን ዩኤስ ከላም የሳከ ነዚር ፔሽስ ክራን ሻዚያ በሺር የአካሽባኔ ጋር ስሪነገር ስቴሽን ሄ ስቡ ከ 4:30 ሆ ረሄ አብ አካሽባኔ ዲሊ ሴ ኡርዱ ኸብሩ ከ ቡሉቲን ናሽሮ ካ
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई असेंबलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनआईए ने आईएसआईएस के राबते वाली बायोटेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्ज़ाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाज़ों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर वसी बातचीत करेंगे। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। वियतनाम के सदर कल भारत के 3 दौरे पर नई दिल्ली पहुँचे थे। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल उमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत नित्यानंद राय ने किया। उनके हमराह वियतनाम हुकूमत के बहुत से वज़ीरों और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द भी आया है। उनके साथ सरकर्दा ताजिरों का एक वफ्द भी है। सदर तोलाम का इस साल अप्रैल में वियतनाम के सदर के तौर पर चुने जाने के बाद भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वियतनाम के सदर तोलाम को आज राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट में महात्मा गांधी को गुलाए अकीदत नजर करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे और उनका तबादला किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वियतनाम के अपने हम मनसब के साथ आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दौरे पर आए मेहमान से मिलने जाएंगे। वियतनाम के सदर आज इंडियन काउंसिल ऑफ

0: वर्ल्ड अफेयर्स के जेर एहतमाम 56वां सप्रू हाउस लेक्चर भी देंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारत के इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस को इंतखाबात के बाद किसी भी किस्म के तशद्दुद को कतई बर्दाश्त न किए जाने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। ज़मीनी सतह पर सूरतेहाल का जायजा लिए जाने के बाद जारी किए गए एक हुक्मनामे में कमीशन ने सख्त और फौरी इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि असेंबली इंतखाबात के नतीजे के बाद अमन कानून को बरकरार रखा जाए। इंतखाबी कमीशन ने रियासती इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो इंतखाबी नतायज के ताल्लुक से डराने धमकाने, बदले या टकराव की किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इकदामात करें। कमीशन ने हुक्काम को यह भी हिदायत दी है कि वो तमाम शहरियों, खुसूसन कमज़ोर ग्रुपों और सियासी कारकुनान की हिफाजत व सलामती को यकीनी बनाएं और हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की नुमाया मौजूदगी को बरकरार रखें। सीनियर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो चौकस रहें और रियासत में होने वाले किसी भी वाकये की इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करें। ये हिदायत तशद्दुद के उन अलग अलग वाकयात के बारे में तश्वीश के दौरान जारी की गई हैं जिनकी इत्तला नतायज के ऐलान के बाद दी गई थी, जो इंतखाबात के बाद रियासत के इलाकों में बार बार उभरने वाला मामला है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाने के बाद नई असम्बलियाँ तश्कील दिए जाने की गरज से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल के इख्तिताम पजीर होने और नई सरकारों की तश्कील के मकसद से रियासतों के गवर्नर्स और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान को भेजे गए हैं। इंतखाबी कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि नोटिफिकेशन का इजरा चुनाव नतीजे के ऐलान के बाद एक कलीदी आईनी कदम है और इसके साथ ही इंतखाबी कमीशन की जानिब से नई असम्बलियाँ तश्कील दिए जाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। अहदेदार ने यह भी कहा कि कमीशन ने असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के दौरान सभी जाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया है। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक पूरा अमल कानूनी फ्रेमवर्क के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है। नोटिफिकेशन से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुंतखबा नुमाइंदों की हलफ बरदारी और नई सरकारों की तश्कील की राह हमवार हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि भारत एक जमहूरियत है और इसका हमेशा एहतराम किया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल की सुबुकदोश होने वाली वज़ीर आला ममता बनर्जी की मुबैना राय जनी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इस तबसरे को इंतशार पैदा करने वाला करार दिया और ममता बनर्जी पर जोर दिया कि वो इस किस्म के बयान देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करें। जनाब पात्रा ने कहा कि ये तबसरे तश्वीश का बायस हैं क्योंकि मुल्क की जमहूरियत में इक्तदार की मुंतकली हमेशा पुरम तरीके से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बीजेपी पर हमला नहीं है बल्कि ये जमहूरियत और मुल्क के आईन पर हमला है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
1: बीजेपी ने सीनियर पार्टी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह को मगरबी बंगाल में लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया है, जबकि ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी को रियासत में मरकजी मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा को आसाम में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब करने के लिए मरकजी मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी को रियासत में मुआविन मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और पुदुचेरी में बीजेपी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में मरकजी मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। बीजेपी के पार्लियामानी बोर्ड ने मरकजी मुशाहिदीन के लिए इन नामों की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कुश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी को हालिया तारीखी और फैसला कुन इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी ने 294 रुकनी बंगाल असेंबली में 206 सीटें जीती हैं, जबकि ममता बनर्जी की क्यादत वाली तृणमूल कांग्रेस ने महज 80 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इधर आसाम में बीजेपी ने मुसलसल तीसरी मरतबा अपना इकतदार बरकरार रखा है, जबकि पुदुचेरी में एनडीए ने 30 से 18 सीटें जीतकर वाजे

0: इस दौरान महकमे ने मगरबी राजस्थान में हफ्ते से पहर तक इक्का दुक्का मकामात पर शदीद गर्मी पड़ने की भी पेशगोई की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी से छाए होने वाले आज के रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस के अलावा दीगर अखबारात ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की सख्त मजम्मत किए जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। भारत और जापान का सेहत के शोबे में तआवुन को मजबूत करने पर जोर, इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस बयान को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल और आसाम समेत पूरे मुल्क को तरक्की देंगे। बीजेपी ने अमित शाह को मगरबी बंगाल और जेपी नड्डा को आसाम का मुबसर मुकर्रर किया है। इस खबर को तकरीबन सभी अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के सदर तोलाम के साथ बातचीत करेंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों से कहा है कि वो चुनाव के बाद के तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त न करने का उसूल लागू करें। इंतखाबी कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद मगरबी बंगाल, आसाम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नई असम्बलियों की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। NIA ने ISIS के रابطے वाली बायो टेरर साजिश में एक डॉक्टर और दो दीगर को बड़े पैमाने पर लोगों को जहर देने के इल्जाम में माखूज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो आप नाई हुरमुज में फंसे हुए जहाजों को बहिफाजत निकालने के लिए शुरू किया गया है, उसे मुख्तसर वक्फे के लिए रोका जाएगा। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

0: आज की सुर्खियों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम।
1: समीर, एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर की सुर्खी है, टू इंडियन जर्नलिस्ट विन पुलित्ज़र प्राइज।
0: मशरिकी वुस्ता कशीदगी, ईरान का अमरीकी जंगी जहाज पर हमले का दावा, अमरीका की तरदीद।
1: एक उर्दू अखबार के अंदरून सफ़े पे छपी खबर की सुर्खी है, टीवी के लीडर विजय का गवर्नर को खत, तमिलनाडु में हुकूमत साजी की कोशिशें शुरू।
0: अमेरिका का एक बार फिर चीन पर ईरान की फंडिंग करने का इल्जाम।
1: एक और सुर्खी है, यूपी और बिहार में तूफान और आसमानी बिजली की तबाहकारियां, मुख्तलिफ वाकात में 43 लोगों की मौत, मुतादिद जख्मी।
0: ईरान की यूएई पर हमलों की तरदीद।
1: एक और सुर्खी है, भगवंत मान की सदर मुर्मू से मुलाकात, मुनहरिफ राज्यसभा अरकान की रुकनियत खत्म की जाए।
0: यूएई ने कोई इकदाम उठाया तो अमारती मफादात हमारा हदफ होंगे, ईरान।
1: समीन, एक उर्दू अखबार के स्पोर्ट्स के सफ़े पर छपी इस खबर की सुर्खी है, सिएटल पहली बार 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा।
0: आबनाई हरमोज, अमरीकी हमले में 5 हलाक, ट्रंप की ईरान को तबाह करने की धमकी।
1: एक अंग्रेजी अखबार के स्पोर्ट्स पेज पर छपी इस खबर की सुर्खी है, इंडिया रिटेन्स नंबर 1 पोजीशन इन आईसीसी टी20 रैंकिंग्स।
0: एक उर्दू अखबार लिखता है, अक्वामे मुत्तहिदा का अगला सरबराह कौन होगा, चीन की एक खातून की हिमायत, आलमी इदारे के लिए इंतखाबी अमल शुरू।

0: एक और अंग्रेजी खबर की सुर्खी है, मैसिव टर्नआउट मार्क्स ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु मीट एट KU। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बैक्ड नेशनल कैंप फ्यूल एशियन गेम्स 2026 प्रेप फॉर इंडियन बैडमिंटन टीम्स। एक उर्दू अखबार में छपी खबर की सुर्खी है, शुमाली कोरिया के खिलाड़ी 12 साल बाद पहली बार जनूबी कोरिया में मुकाबला करेंगे। एक और खबर की सुर्खी है, अलकुदासिया के हाथों अन्नसर को शिकस्त, खिताब की उम्मीदों को शदीद झटका। एक और खबर की सुर्खी है, फ्रेंच ओपन के इनामी फंड पर तनाजा,
1: बंगाल में अमित शाह मरकजी मुबसर मुकरर, हुकूमत साजी की तैयारियां।
0: एक और खबर की सुर्खी है, 6 साल 3 टाइटल्स, इंटर मिलान अतालवी फुटबॉल की नई सुपर पावर बनकर उभरी।
1: समीन, ये थी आज की सुर्खियां। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: समय में आप समाप्त कर रहे थे मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।

समीन आप गुलाम अली की आवाज़ में ये गजल सुन रहे थे। समीन हमारे प्रोग्राम के हवाले से एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारी की रिकॉर्डिंग आज दिन के 2 बजे से 3 बजे तक हो रही है। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है कैंसर से बचाव। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदऊ किया है नामवर माहिर सरतान डॉक्टर शबनम बशीर को।

0: जात असासाजात के मेयार में बेहतरी और मजबूत सरमाए की पोजीशन भी बरकरार रखी, जो बैंक की मजबूती और मौसर हिकमत अमली का सबूत है। साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर में शमसी तवानाई के फरोग को तकवीत बख्शने के लिए हुकूमत की मजबूत अजम का यादा किया है। उन्होंने मुतलक अफसरान को मुजवजा शमसी मनसूबों से मुतलक तमाम मसाइल को मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल करने की हिदायत दी है। वजीर मौसूब जम्मू कश्मीर सोलर एसोसिएशन के एक वफद के साथ बातचीत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। वफद ने खत्ते में काबिल तजी तवानाई के फरोग से मुतलक अहम उमूर पर वजीर के साथ तबादला ख्याल किया। शुमाली रेलवे कश्मीर से मुल्क की बड़ी मंडियों तक मेवों की तरसील के लिए एयर कंडीशन कार्गो ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर कर रही है। इस मुजवजा मंसूबे का मकसद वादी के जरिए शोबे को मजबूत बनाना और खासतौर पर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स निजाम को बेहतर बनाना है। इस मंसूबे के तहत सेब, चेरी और दीगर मौसमी फलों की पैदावार को दर्जे हरारत के कंट्रोल के साथ मुंतकल किया जाएगा, जिसे उनकी ताजगी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। आखिर में दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम समय सुबह 9:30 प्रोग्राम जारी पयाम सुबह बुश तुहद मेजबान जहूर अहमद तो मे
2: सदत खान
1: समय बम बोजो कौशर मौसीकी 10 तुलो यमी नातिया कलाम सत्या

کر کیا کر یمن پانچن دہن تہن لج وقت شر کر گئی ساری سمکھو۔

وٹ معذرتی نزدیک وچت

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश शब्दान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविन तुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश्र सब्दान।
2: मोहतरम सविन तुएसु बोजान सूफी ते रेशी विचारन पेठ मपनी प्रोग्राम सूफी सदा।

0: थोड़ा अपसेट हुआ था मैं कि पहले रेस में साइकिल चोरी हुआ था। जब मैं घर पहुंचा था तो घर में मैंने देखा था दूसरा साइकिल, नया साइकिल।
1: अच्छा।
0: अभी आंगन में देखा था, पापा ने लिया था दूसरा, मेरे दोस्त ने उसको पापा को फोन किया था, इसका साइकिल चोरी हुआ था। तब मैंने देखा था वो साइकिल, तब से मुझे शौक बढ़ा। मैंने बोला पापा ने दूसरा साइकिल ले आया एक ही महीने में, तो अब यहाँ से मैं मेहनत ज्यादा करूंगा, तो यहाँ से मैं कुछ ना कुछ करूंगा।
2: जी जी, आपके पापा की नई साइकिल आपके लिए नई इंस्पिरेशन बन गई।
1: हाँ, बिल्कुल
0: नई इंस्पिरेशन बनी है, क्योंकि उसके बाद जब नेशनल की ट्रायल हुई थी उसके साथ ही ये भी हुआ था, सैलाब भी आया था ना, तो उसके बाद ट्रायल भी हुआ था सैलाब के बाद, जिसमें मैं सेकंड आया था, वो नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा, मगर साइकिल मेरा लोकल ही था, 4000 के आसपास साइकिल था, तो मुझे नहीं पता था नेशनल में कैसे होता है साइकिल, कितने महंगे साइकिल होते हैं। तो जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मैं गया था कर्नाटका, तो कर्नाटका में मैं जब गया था तो उधर मैंने साइकिल अपना देखा था, सबसे लोकल साइकिल था, और मेरी जो रेस थी 80 किलोमीटर थी। हाँ, क्योंकि सबके पास 5-5 लाख के साइकिल थे, 4-4 लाख के साइकिल थे।
2: जी,
0: तो जब मैं रेस के लिए उतरा, पहले तो आराम से चल रहा था उनके साथ, क्योंकि 40 स्पीड से चल रहे थे अराउंड। जब हाफ रेस खेली लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, तो मैंने बंच छोड़ा, बंच भाग गया, तो मैं फिर धीरे धीरे करके कंप्लीट किया था वो रेस।
2: यानी आपने वो रेस में पार्टिसिपेट फुली किया?
0: हाँ, फुल किया था, 80 किलोमीटर मैंने पूरा किया था। हाँ। बट फुल किया था मगर छोड़ा नहीं, पूरा किया था।
2: तो देखिए, मुझे मुझे लगता है यहाँ पर कि मतलब जो भी गेम है, कोई भी एथलीट के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके पास कितनी महंगी चीज है, विल पावर इज इम्पोर्टेंट। आप क्या कहते हैं?
0: वो बात तो जरूरी है, क्योंकि जब मैं वो रेस खेलने के बाद घर पहुंचा तो मैंने पापा को यही बोला था कि पापा उधर ऐसे साइकिल है कि महंगे साइकिल है, उधर ये साइकिल नहीं चलते, उधर ऐसे ऐसे साइकिल चलते। मेरे पापा को तो ये नॉलेज नहीं है ना, मतलब कार्बन फाइबर होते हैं, कैसे साइकिल होते हैं। उसने बोला कि कौन से साइकिल है आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए ले आऊंगा। तो पापा ने बोला कोई नहीं, उसके बाद मैंने मतलब पापा को बोला, उसने पैसे दिए, मैंने 80,000 के आसपास लिया था साइकिल।
2: माशाल्लाह।
0: तो उसके बाद एक बड़ा इवेंट हुआ था टूर डे कश्मीर, जिसमें इंडिया के सारे राइडर आए थे, टॉप टॉप इंटरनेशनल प्लेयर भी आए थे। हुआ था 350 किलोमीटर, 6 दिन, 6 स्टेज था।
2: अच्छा।
0: तो मैं तो उससे पहले ट्रेनिंग 2 टाइम करता था सुबह शाम, जिसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क की थी। तो जब वो रेस हुई थी टूर डे कश्मीर, पहले स्टेज में मैं 4th आया था, क्योंकि थोड़ा मतलब अंदर से था यार, बहुत बड़े प्लेयर आए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पर मैंने मेहनत ऐसी की थी, हिल पे भी बहुत मेहनत की थी, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ होगा मेरे से। पहले स्टेज में मेरा 4th या 5th आया था, और सेकंड स्टेज में गोल्ड आया था। दूसरे दिन, तीसरे दिन था तीसरा स्टेज, उसमें भी मेरा गोल्ड आया था दूधपथरी में। चौथा गुलमर्ग में था, चौथा दिन उधर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, पांचवें दिन सोनमर्ग में था, उधर मेरा सिल्वर आया था।
1: अच्छा।
0: तो लास्ट दिन मेरा 4th आया था, तो ओवरऑल जब मेरी रैंकिंग देखी गई तो मेरा आया था 2nd सिल्वर इंडिया में।
1: अच्छा वैद्य जी, मुझे बताइए, कश्मीर में आमतौर पर बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेलने की जिद करते हैं, तो आपने कभी कोई दूसरा स्पोर्ट ट्राई किया है?
0: अगर देखा जाए कि मैंने साइकिलिंग 17 साल के एज में किया था, उससे पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था, अच्छा खासा क्रिकेट खेलता था, जिसमें मुझे आफरीदी के नाम से बोला जाता था, क्योंकि
1: अच्छा।
0: मैं भी थोड़ा हिटिंग करता था अच्छी तरीके से, और बीच बीच में फुटबॉल भी खेलता था, फुटबॉल से अच्छा मैं क्रिकेट खेलता था। बट क्या हुआ, जब हम मैच हारते थे पूरे टीम को बोलते थे आपने हराया, उसने हराया। मैंने सोचा यार ये ऐसा होता है कि मैं ऐसा गेम चुनूंगा कि जैसे
1: इंडिविजुअल
0: में मैं चला गया साइकिलिंग में। तो साइकिलिंग में क्या फ़ायदा है, साइकिलिंग में जब SR होता है, SR12 इससे पहले SR था, तो उस पर भी जॉब मिल सकता है अगर नेशनल में मेडल हो।
1: ठीक है। अच्छा दोस्तों, प्रोग्राम जारी है, आइए सुनते हैं ये नगमा।

0: दोस्तों प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। अच्छा भाई साहब, हम जानते हैं कान्हामा कश्मीरी शालों के लिए काफ़ी मशहूर है, तो आपके इलाके के लोग आपकी साइकिलिंग को कैसे देखते हैं?
1: देखो, अगर हम कान्हामा की बात करें, कान्हामा का नाम पहले गंडकोरमा था
0: जी।
1: हाँ, उधर था गुलाम मोहम्मद वानी
0: जी,
1: जो ये कानी शाल के साथ करता था। वो एक्स एमएलए भी था 1965 से 1970 तक के आसपास वो एक्स एमएलए भी था। तो उसने उधर वो कानी शाल का वो स्टार्ट किया था जिस वजह से वो मशहूर हुआ था, जिस हम फिर उसको प्यार से मतलब कानूम सो भी बोलते थे।
2: अच्छा।
1: क्योंकि वो कानी शाल के साथ करता था, उसने मतलब पूरे गांव में ना सबको सिखाया हुआ कानी शाल कैसे करते हैं। तो मतलब अवर हाला करते हैं, 90% उधर वही कानी का शाल का
2: काम करते हैं।
1: तो वहाँ से हम उस गांव का नाम पड़ा था कान्हामा
0: जी।
1: हाँ, कानी शाल के। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें, क्योंकि मैं पूरे गांव में ना एक अकेला सपोर्ट्स प्लेयर हूँ।
0: अच्छा।
1: क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी हो, प्रोफेशनली मैं एक ही साइकिलिस्ट हूँ जो मतलब ओवरऑल सारे गेमों में एक ही सपोर्ट्स प्लेयर हूँ जो उस गाँव से निकला हुआ है। क्योंकि हर कोई फैमिली गांव के गांव में मुझे मतलब हमेशा अच्छे से मतलब ये करते हैं, सपोर्ट
0: करते हैं।
1: हाँ, सारे सपोर्ट करते हैं। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि आप दरबदरी कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। सारे ये बोल रहे हैं ये हमारा इंस्पिरेशन है। मैंने आज तक डॉक्टर जो भी है ना, डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो या अच्छा बिजनेसमैन हो, वो तक मुझे बोलते हैं हमारा इंस्पिरेशन है।
0: अच्छा,
2: बहुत बड़ी बात।
0: अच्छा, चलिए अब उन इवेंट्स की बात हो जाए जिनमें आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है।
1: स्टेट मैंने स्टेट 2015 में रिप्रेजेंट किया था कर्नाटका में
0: जी।
1: हाँ, क्योंकि जब मैंने पहला नेशनल खेला था तो उस टाइम मेरा रैंक तो ज़्यादा नहीं आया था, मतलब कंप्लीट किया था। उसके बाद जब मैंने वापस आके साइकिल लिया था तो अच्छी तरीके से मैंने ट्रेनिंग किया, प्रॉपर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। बट अभी वो जोन उनका पता नहीं था जोन।

0: कैसे ट्रेनिंग करना पड़ता है, बट इतना है कि मैं एफर्ट के हिसाब से ट्रेनिंग करता था।
1: जी
0: हाँ, 100 किलोमीटर करना, 120 किलोमीटर करना, बट इतना नॉलेज नहीं था कि अब जोन कैसे करना है, हार्ट रेट कैसे चलाना है, क्योंकि तब नॉलेज थोड़ी कम थी। जब 2016 हुआ था, 2016 में मेरा मतलब रेस हुई थी, जब उधर भी मेरा गोल्ड आया था, वही कश्मीर
1: ये कहाँ पे ये रेस हुई थी?
0: में ही।
1: अच्छा
0: हाँ, कश्मीर में मुझे नईम अख्तर आया था, उसने मुझे साइकिल किया था स्पॉन्सर।
1: जी
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: स्पॉन्सर मिला था साइकिल, उसने मुझे अराउंड 2 लाख के आसपास
1: वो
0: वो
1: साइकिल।
0: हाँ साइकिल था जिसने मुझे वो साइकिल प्रोवाइड किया था। तो उसके बाद मेरा जो नेशनल हुआ था उसमें मेरा

0: आया, सब कुछ आया,
1: जी
0: नॉलेज अब ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद हार्ट रेट, पावर, सारा कुछ ले आया। तो उसके बाद मैंने शेड्यूल करना स्टार्ट किया। वहाँ से मैं 2021 में मेरा फ़ोन आया था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से,
1: जी
0: क्योंकि उधर से मुझे एडमिशन मिला था,
1: अच्छा,
0: हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट,
1: ओ
0: हाँ, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस की वजह पे। तो 2000 उस राजेश को था, उसने मुझे अपने अंडर ट्रेनिंग करवाया था। 2022 में पहले मतलब महीने में मैं इंडिया के तीसरे नंबर पे आया था रैंक,
1: वहां पे ये
0: हाँ, ऑल ओवर इंडिया में मेरा तीसरा रैंक चल रहा था। फिर
1: कौन सी रेस थी?
0: रेस मतलब नेशनल चैम्पियनशिप, ऑल
1: अच्छा
0: इंडिया यूनिवर्सिटी, उधर फोर्थ आया, नेशनल चैम्पियनशिप में फोर्थ आया था 2022 में,
1: जी
0: हाँ। फिर हमारा सबसे बड़ी रेस हुई थी SCL, यहाँ कैश प्राइज होती है, नेशनल नेशनल रेस है,
1: कहाँ पे मुनक्कद होती है ये?
0: दिल्ली में हुई थी,
1: जी
0: हाँ, वहाँ पर मैं आया था थर्ड, जिसमें
1: अच्छा,
0: मेरा प्राइज भी मिला था 1,15,000।
1: बढ़िया
0: हाँ,
1: बढ़िया
0: वहाँ
1: बहुत
0: पर
1: बढ़िया
0: अराउंड अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल प्लेयर थे,
1: जी
0: हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर थे बहुत अराउंड। अगर रेस के पार्टिसिपेशन की बात करें, पार्टिसिपेशन थी अराउंड 1,500 के आसपास,
1: 1500 में आपकी थर्ड रैंक
0: हाँ,
1: आई,
0: थर्ड रैंक आए थे ओवरऑल इंडिया में। तो
1: बहुत
0: क्योंकि
1: अच्छा
0: वो जब रेसेस होते हैं ना, जो इंडिया में होती है, उसमें होती है पॉइंट्स कलेक्ट
1: जी
0: करना, हर रेस में जो पहला आता था उसको होते थे 100, फिर 80, फिर ऐसे ही मेरा रैंक चल रहा था फोर्थ इंडिया में,
1: जी जी
0: हाँ, पूरे साल रहा ऐसे। फिर से नेशनल गया, फिर से वही रिजल्ट 6th,
1: अच्छा,
0: फिर
1: सिक्स्थ
0: हाँ
1: आया,
0: 6th आया था, फिर मेरा यही चलता गया 6th 6th। और उसके बाद 22 में जब नेशनल गेम्स की ट्रायल थी, उधर भी मैं फोर्थ हुआ था,
1: बहुत
0: हाँ,
1: अच्छा। तो पहले दो में कभी आए हैं आप
0: हाँ आया,
1: नेशनल लेवल पे?
0: हाँ, नेशनल में मेरा सिल्वर,
1: 18 आया, किस साल में ये बात हुई?
0: 18 में आया था सिल्वर,
1: 2018 में।
0: हाँ,
1: उसके बाद क्यों आप नीचे चले गए पीछे की तरफ?
0: उसका भी वजह कुछ है, क्योंकि 2018 में मैंने जब मेडल मारा था, उसके बाद मैंने साइकिल लिया था अच्छा सा,
1: जी
0: क्योंकि साइकिल क्या होता है, उसके लिए सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट नहीं चाहिए,
1: उसके लिए
0: सपोर्ट,
1: फाइनेंशियली सपोर्ट
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: उसके लिए मेरे भाई ने सपोर्ट किया था, वो मुझसे 2 साल बड़ा है,
1: जी
0: बड़ा, हाँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत, उसने मुझे तब लिया था 3.5 लाख की साइकिल,
1: जी जी
0: जो इंडिया
1: जी
0: में अराउंड अच्छी साइकिल थी, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी सपोर्ट कर रहा है,
1: अच्छा,
0: हाँ, वो रिसेंटली वो भी
1: मतलब
0: जो
1: फैमिली का पूरा सपोर्ट है आपके
0: पूरा
1: साथ?
0: सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट, सबका सपोर्ट है, बड़ा भाई, छोटा भाई, घर वाले, बहन, माँ बाप, सारे सपोर्ट करते हैं।
1: चलिए
0: सपोर्ट की
1: बढ़िया,
0: वजह से ही आप इस
1: आगे
0: मकाम
1: बढ़िए,
0: तक पहुंचे
1: आगे
0: हैं और
1: बढ़िए।
0: आगे बढ़े
1: हाँ
0: हैं, और बहुत खुशी हुई जानकर कि आपने बहुत सारे रेसेस में पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह जीत कर आए, कहीं ब्रॉन्ज, कहीं सिल्वर,
1: हाँ
0: कहीं गोल्ड, तो ये हमारे लिए फखर की बात है
1: हाँ
0: सादत, और हम ये जानकर बहुत खुश हैं कि आपको फैमिली का बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: सपोर्ट
1: सपोर्ट है,
0: है।
1: बिल्कुल सपोर्ट।
0: और आपसे मजीद बात करेंगे आपकी साइकिलिंग के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में और कुछ खेल के जवाबित के बारे में, लेकिन एक जगजीत सिंह की गजल मैंने रखी है यहाँ पर आपके लिए और अपने सामने के लिए, तो सुने सादात,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चलिए।

0: जी समीन, आपने ये प्यारी सी गजल समाज की, आवाज़ थी जगजीत सिंह की। तो दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम पैम सुबह जो एक लाइव शो है, आपके आप तक बराह रास्त पहुंच रहा है अभी। और हमने इस प्रोग्राम में आज मधु किया है वहीद अहमद को, जो कि एक नेशनल लेवल के साइकिलिस्ट हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं, और इनके साथ हम बात कर रहे हैं। इनके साथ मजीद बात करने से पहले हमारे साथी सादत आप तक पहुंचाएंगे खेल की खबरें।
1: जी, आर्चरी में वर्ल्ड कप 2026 स्टेज 2 के तहत शंघाई में 5 से 10 मई के दरमियान तीर

0: मिनट तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर पयामे सुब
2: सुनो सजना
1: पयामे सुब।
3: दोस्तों, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पयामे सुबह। आज के हमारे मेहमान हैं नौजवान खिलाड़ी वहीद अहमद गनाई। भाई साहब, हमारे यहाँ साइकिलिंग की ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमारे सुनने वालों को ज़रा बताइए इसमें कौन कौन से इवेंट्स मुनक़द होते हैं।
4: देखो, अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले लोकल रेसेस होते हैं जो स्पॉन्सर करवाते हैं, वो तो होते हैं कश्मीर में ही, कश्मीर से बाहर नहीं होते। उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है सेशन जो करवाती है।
3: कितने डिस्टेंस की रेस होती है ये?
4: अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम लोकल रेसेस की बात करें, अराउंड 50 किलोमीटर होती है इधर कश्मीर में लोकल रेस।
3: हाँ,
4: जब डिस्ट्रिक्ट रेस होती है तो वो भी समथिंग सेम ही होती है, 50 किलोमीटर के आसपास। तो उसके बाद होते जो पहले दो बंदे निकलते हैं डिस्ट्रिक्ट में
5: जी,
4: दो बंदों को जाना पड़ता है स्टेट के लिए
3: जी,
4: वो भी सेशन करवाती है। स्टेट में भी सेम होते हैं 50 किलोमीटर के आसपास।
3: अच्छा अच्छा।
4: उधर से पहले तीन बंदे जा रहे हैं नेशनल के लिए। जो नेशनल जाते हैं, नेशनल में हमारा 150 किलोमीटर होता है या 180 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस होता है।
5: हाँ,
4: जिसका एवरेज अराउंड 45 के आसपास रहती है पर किलोमीटर
3: जी जी।
4: हाँ, 45 के। तो उसमें जो नेशनल लेवल की रेस होती है, अगर उसमें मेडल भी आए तो उसमें हमारा SO12 में भी नाम आता है जॉब के लिए।
5: मईद साहब, मुझे बताएं साइकिलिंग के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का मतलब ख्याल रखना पड़ता है? जैसे एक साइकिलिस्ट हो गया तो उसे क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए अपने डे टू डे लाइफ रूटीन में?
4: सबसे पहले जो प्रोफेशनली साइकिलिस्ट है उसको चाहिए डेडिकेशन।
5: डेडिकेशन इज मस्ट।
4: और डिसिप्लिन में भी जरूरी रहना है, क्योंकि हम सुबह जब ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद ज़रूरी होती है एक्सरसाइज करना, क्योंकि हमारा स्ट्रेच मतलब मसल स्ट्रेच करना ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेच नहीं करेंगे अगले दिन बॉडी नहीं चलेगी। तो स्ट्रेच करना ज़रूरी है 10-15 मिनट, उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हो, उसके बाद नहाना है, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद 4 बजे हमारा फिर से वही सेम रहता है, स्ट्रेचिंग या कोर एक्सरसाइज
3: जी।
4: हाँ,
5: किन चीज़ों से इंसान ऐसे मतलब साइकिलिस्ट को किन चीज़ों से परहेज?
4: सबसे जंक फूड।
5: अच्छा अच्छा।
4: हाँ, और ज़्यादा चीनी लेते हैं ना, वो भी नहीं लेना चाहिए।
5: और स्मोकिंग वगैरह?
4: हाँ, स्मोकिंग तो ड्रग्स से तो दूर ही है।
3: आपका खुद का डाइट प्लान क्या है?
4: मेरा डाइट प्लान है, मैं स्ट्रीट फास्ट एथलीट हूँ।
5: चलिए।
4: हाँ, मेरा मतलब जो प्रोटीन कंपनी है मैं उसका एडवर्टाइजिंग भी करता हूँ।
5: ओके।
4: तो वो मुझे सारा प्रोटीन, जब मैं ट्रेनिंग के बाद आता हूँ तो सबसे पहले ट्रेनिंग से पहले मैं लेता हूँ कफ्स, ओट्स लेता हूँ, पीनट लेता हूँ और चॉकलेट में जेब में रख के निकलता हूँ ट्रेनिंग के लिए। जब मैं आता हूँ उसके बाद प्रोटीन लेता हूँ, उसके बाद दलिया, अंडे, सारा कुछ। और भी दो दो घंटे के बीच में मैं फिर से लेता हूँ अंडे के लिए, क्योंकि अपना डाइट मेंटेन रखने के लिए
3: जी।
4: हाँ, क्योंकि पानी भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम 4-5 लीटर पीना पड़ेगा आपको, वरना किडनी।
3: अच्छा भाई जी, आज नेशनल बेवरेज डे है तो मुझे बताइए आपको कौन सा पसंद है बेवरेज, आप क्या पीना पसंद करते हैं ज्यादा?
4: मैं पानी।
3: चाय वगैरह कुछ
4: नहीं? नहीं, पानी ज्यादा।
5: अच्छा,
4: पानी को ज्यादा प्रेफर करता हूं। मैंने आज तक कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है, कोल्ड ड्रिंक ना जंक फूड ना ले।
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
3: तो क्या आप ये जो साइकिलिंग कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नौकरी वगैरह भी कुछ करना चाहते हैं?
4: देखो, पहले मैंने सोचा था साइकिलिंग करूं, आगे जाऊं, उसके लिए चाहिए सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद चाहिए सपोर्ट गवर्नमेंट का। अभी 2014 से हम लड़ रहे हैं जॉब के लिए।
3: अच्छा।
4: तो बट अभी हुआ था रिसेंटली, उसका निकल गया था लिस्ट, उसमें मेरा नाम भी था SO12 में। तो इसके लिए अब आगे पैसे भी बहुत लगते हैं, इक्विपमेंट, हेलमेट, बूट, शूज लेना पड़ता है ना, कंटिन्यू लेना पड़ता है। और ट्रेनिंग मंथली हम 10,000 देते हैं आगे।
5: अच्छा, अपने ट्रेनर को?
4: हाँ, ट्रेनर को, क्योंकि जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो ऐसे नहीं होती, हमारा हार्ट रेट पे होती है, साइनस पूरा होती है।
5: अच्छा।
4: हाँ, वो ऐसे नहीं कि हम साइकिल पे चढ़े और चलाया
5: चल।
4: हाँ, हमारा हार्ट कितना होना चाहिए, हमारा स्पीड कितना होता है, हमारा पावर कितना होना चाहिए
5: जी।
3: तो अपने फाइनेंसेस कैसे आप मैनेज करते हैं?
4: میں مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرا دو بھائی جو ایک ہے فائر سروس میں, بڑا محمد یونس اور

0: उसने भी बहुत सपोर्ट किया है, और तारे का मुझे छोड़ा जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसने मुझे इक्विपमेंट सब कुछ दिया है, तो वो मुझे जॉब करते हैं, मम्मी भी जॉब करती हैं,
1: जी जी
0: वहाँ
1: जी
0: पापा बिजनेस करता है
1: अच्छा
0: इधर
1: अच्छा
0: वो।
1: अच्छा वो आपकी मदद करते
2: अभी तक
1: हैं।
2: आपको फैमिली ही सपोर्ट कर रही
0: हाँ
2: है,
0: बहुत सपोर्ट,
2: बहुत बढ़िया
0: बहुत
2: बहुत
0: बढ़िया।
1: दोस्तों ये गुफ्तगू अभी जारी रहेगी, तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

जी समीन, आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह, और जो शुरू हुआ था सुबह 7:10 से, और ये अख्ताम होगा 11:30 तक। दोस्तों आपको बता दें कि

సమీన్ మాజరత్ చేసి అసాన్ ఇష్యూ కలామే లాలా అర్గేమ్

0: سامعیني محترم، آج شو معروف صوفی شعر لالا ارغم صاحبن یوم وصال تحت موقع پر بوز اتائی تہندی کلام فنکار ایس فاروق احمد گنائی تی تہندی ہم نوا یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، دن کے 12 بج رہے ہیں، آئیے آپ آکاشوانی دلی سے سماعت کرتے ہیں انگریزی اور ہندی میں خبریں۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولی نگم۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं।

0: राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रूस ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज पेइचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi is holding talks with visiting Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. Both the leaders are expected to discuss wide-ranging bilateral issues. Tho Lam, who is on a 3-day visit to India, was earlier accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan this morning. The Vietnamese leader was received by President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi upon his arrival at Rashtrapati Bhavan. We have a report.
2: After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver

समीन दीपक अग्रवाल के अशार आप समाप्त कर रहे हैं। आप कर रहे थे ये अशार समाप्त, और ये आवाज़ थी राहत फतेह अली खान की, फिल्म का नाम तिश्नगी। समीन आपको फिल्मी नगमे और भी सुनाएंगे, लेकिन अपने समीन तक एक इत्तला पहुंचाना चाहेंगे। दोस्तों प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग आज दिन के 2 बजे से 3 बजे तक हो रही है। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है कैंसर और कैंसर से बचाव। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदऊ किया है नामवर माहिर सरतान डॉक्टर शबनम बशीर को। अगर आप हमारे मेहमान

0: दोस्तों, फागी टू फिल्म से आपने ये नगमा समाअत किया आतिफ असलम की आवाज़ में। फिल्मी नगमे आप समाअत कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। अब खबरें हुआ चाहती हैं, आइए आप खबरें समाअत करते हैं। पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वस्ती कश्मीर के बड़गाम के हरे कुंभे, समाजी तंजीम, नीज रूहानी और सियासी लीडरों से अपील की है कि वो जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में शिद्दत लाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया पूरी मजबूती के साथ मुनशियात की लानत को उखाड़ फेंकने के लिए पुरजम है। इन बातों का इजहार उन्होंने बड़गाम में मुनशियात मुखालिफत यात्रा के शुरका से खिताब के दौरान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी के डिजाइन और डिग्री शोबे के कामयाब तालबिलमों के साथ बातचीत की। तालबिलमों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने मुशाहिदात और तजुर्बात के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय भी मौजूद थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में सिविल सेक्रेटरिएट श्रीनगर में एक आला सतह

0: की मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में बजट 2026-27 के दौरान कलीदी ऐलानात की तेज दर अमलावरी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए शुरू की गई फलाही स्कीमों की मौसर और बरवक्त अमलावरी को यकीनी बनाने की अफसरान को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की यूटी सतह की 17वीं मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मुनशियात मुखालिफ कवानीन की अमलावरी, ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई और नशे के आदि अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में कवानीन के सख्त अमलावरी की हिदायत दी। मीटिंग में डीजीपी नलिन प्रभात और इंतजामिया के कई आला अफसरान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर बैंक ने मुसलसल चौथे माली साल में रिकॉर्ड मुनाफा की शानदार रिवायत को बरकरार रखते हुए साल 2025-26 के लिए अपनी तारीख का सबसे ज्यादा सालाना मुनाफा 23,63,47,00,000 रुपए दर्ज किया है। बैंक ने माली साल का इख्तिताम भी एक शानदार सहमाही कारकर्दगी के साथ किया, जहां तकरीबन 800 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया गया। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने कहा कि आलमी जोग्राफियाई गैर यकीनी सूरत हाल और मकामी चैलेंजेस के बावजूद बैंक ने रिकॉर्ड मुनाफा हासिल करने के साथ साथ असासजात के मेयार में बेहतरी और मजबूत सरमाए की पोजीशन भी बरकरार रखी, जो बैंक की मजबूती और मौसर हिकमत अमली का सबूत है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने केपीडीसीएल के इंजीनियरों, मुख्तलिफ बैंकों के अहदेदारों और पीएम सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना से वाबस्ता वेंडर्स के साथ एक मीटिंग में जिले में इस स्कीम के लिए मुकर्रर किए गए अहदाफ और हसूलियाबियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि पिछले माली बरस के दौरान श्रीनगर जिले में इस योजना के तहत 5,316 रूफटॉप नस्ब किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने स्कीम को वसत देने की जरूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉ बिलाल महीदीन भट्ट ने जिले में शनिचरवार 9 मई को हो रही मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सिविल सोसाइटी मेंबरान, ताजरों, ट्रांसपोर्टरों और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ तबादले ख्याल के दौरान उन्हें इस यात्रा में शिरकत करने की ताकीद की। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने जिला अफसरान की एक मीटिंग में मर्दुमशुमारी के अमल के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि इस मकसद के लिए फील्ड अमले को मुतहर्रिक किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के माबेन करीबी तालमेल पर जोर दिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिले में मुनक्कद की जाने वाली मुनशियात मुखालिफ पदयात्रा के लिए भी की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब ने जिला सतह की स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग में जिले के सरहदी देहात के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मौसूल हुई तजावीज का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अमली पायदार और अवामी मफाद पर मबनी मनसूबाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने जिले के मीरहामा में कायम जवाहर नवोदया विद्यालय का दौरा किया और वहां जारी तामीरती कामों का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि इस मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 47 करोड़ रुपए है। डीसी ने मुतलिका महकमों को हिदायत दी कि वह मंसूबे को मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। महकमे जंगलात से वाबस्ता हिलाल मलिक ने महकमे के प्लानिंग एंड पब्लिसिटी डिवीजन की जानिब से मुनक्कदा पहले जंगलात और जंगली हयात फोटोग्राफी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। हिलाल मलिक को जंगली हयात, अवाम और जंगलाती जिंदगी की बेहतरीन दस्तावेजी फोटोग्राफी पर यह एजाज दिया गया। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने हिलाल मलिक को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जंगलात ने श्रीनगर के फॉरेस्ट कम्प्लेक्स में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान हिलाल मलिक को इस एजाज से नवाजा। काबिल जिक्र है कि हिलाल मलिक गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से महकमे जंगलात के साथ वाबस्ता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब। यह आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हूँ बुलेटिन हूँ खुर्शीद अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वस्ती कशीर हिंदिस बड़गाम जिल्लस मंज प्रेथ आयालस समाजी तंजीमन अख्तुई रूहानी तो सियासी लीडरन अपील कर तिम जिल्लस अंदर चलाने वन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानस मज शिद्दत तमो दूत यकीन इंतजामिया मजबूती सान मुनशियातस मूल प्राटन बापत पुरजम यह कत वन तमो बड़गाम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान क्या कि हिस्स रंग कड़नाम पदयात्राई मज शिरकत कर लूकन खिताब कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कर लोक भवन जम्मू यूनिवर्सिटी हिंदे डिजाइन योर डिग्री शोब कन तलब इलम सत बात तलब इलमो दल जी एस पन्न मुशाहन तो तजुर्बन मुतलिक जानकारी अत मौक पे यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय तौजूद वजी अला उमर अब्दुल्ला सदारत मज सपोज सिविल सेक्रेटरी

0: ये फॉर्म PER2A मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी भी पंचायत हलके में ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फॉर्म और अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं।
1: पंचायत इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश होने की तारीख 27 मार्च 2026 है और 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
0: ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 8 मई तक एवं फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल 2026 15 मई 2026 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्रामक अजीक शुमार है छस बरूबी निसा खान। सन्स प्रोग्रामस मन छु तुहुंद इस्तकबाल। सानीन जिंदगी छ अक इम्तिहान। गम ऐस्तन या खुशी यम छ इंसान सिन खतर दोशवे आजमाइश आसान। जिंदगी हिंद सफरुक सोन वगुन छ अक अटल हकीकत। तो अमुक सामन प्रेथ इंसान करुन पेवान, यानी जिंदगी छन प्रेथ विज हिश रोजान। तो जिंदगी हुंद उतार चढ़ाव इंसान सिन शख्सियत मजबूत बनावान। अम सू इंसान पनि असल कुवत पहचानान। तो यथ हालात इंसानस समझदार साबिर तो तजुर्बकार बनावान। जिंदगी हिंद नशीबो फराज यही हेचनावान जे अस पज प्रेथ हालस मज शुक्र गुजार तो मुतवजिन रोजुन, यानी खुशी मज गसन मगरूर बनुन तो गमस मज गसन मायूस सपदुन। अम सू अकिस इंसानस उम्मीद हुन सबक मिलान। तो ये हेचनावान जे हर कह हालत अर्जी मुश्किल हालातन मज गसे प्रेथ कदम सोच समझ तुलुन। यम लोग तकलीफन मज साबित कदम रोजन तिम छ जरूर कामयाब सपदान। वलिव करो अथ मुतलिक तफसीलन कत बात। आज सैन मेहमान इशरत मुश्ताक। इशरत जी अस्सलामु अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
2: सैन प्रोग्रामस मज छ तुहुंद खुश आमदीद।
3: शुक्रिया
2: इशरत जी। जिंदगी हिंद सफरस मज क्याज छ उतार चढ़ाव यवान?
3: जिंदगी छ अल्लाह ताला सिन तरफ अख इनाम अख अमानत। मगर ये वन कि कंसि तिन् हक अत अमानत खयानत कर। अमुक आगाज माजि हिंद थन पेन पेठे सपदान। यानि गोडनच वदन क्रेख दिथ पन्न परेशानी हुंद इजहार कर। आया कि अमिस बोछ लजम या पेशा पाखान मसल या गहे सो असुन गुलाल अके प्राच असुन त्रवित खुशी हुंद इजहार कर।
2: बिल्कुल
3: ये ना समझ ये कि उतार चढ़ाव जन इंसान सी जन्म दिवान।
2: बिल्कुल
3: अगर इस अके दरियाव ग्रेज वो गहे वारिया थजर नीथ आसमान आब खालान।
2: बिल्कुल
3: गहे क्या चु? गहे चु सोत सोत पकान।
2: बिल्कुल सही।
3: जिंदगी हुंद उतार चढ़ाव यम चु जरूरी क्याज दपा अगर इस अकिस यह प्रैक्टिकल ती वछन अगर इस अकिस इंसानस ई सी जी करन तथ मज तम रुख गहे हर गहे बोन गहे तीन दार इवन बोल। अगर यम लान यम रुख अक रुख ये यानि यही प्लेन तेल क्या गसि जिंदगी छन तेल कह मायन थावन यानि सोरे खत्म।
2: बिल्कुल
3: तो उतार चढ़ाव जिंदगी हिंद मायने समझावन अस तथ पत किन जिंदगी हुंद हार जीतुक सोन राज अख सबक खटित।
2: बिल्कुल
3: तेले इंसान दिमागस काम हेत ब्रो पकान।
2: इसत जी मुश्किल हालात मज क्यों रवैया पज इंसानस अपनाउन?
3: दपा येतन तो ताफ तोतन
2: शुगुल।
3: बिल्कुल अगर इंसानस खुदा न खास तुथ गम परेशानी ये यम सूच सु पास हौसल पास हिम्मत गसि तस सबरस सोचस काम हेन चाहे कत्या ती मुश्किलात आसन इंसान तिम मुश्किलात एक्सेप्ट कबूल कर किन तथ पे सू वद वद कर किन मसलन कंस कह टोट रावन सू छु वनान बस सोरे मकलो सोरे गो खत्म वन छुन मोन जिंद रोजुन जरूरत
2: के
3: तस पान पानस समझावन कि मौत छ हकीकत।
2: बिल्कुल
3: तेली हेके सू थोद वथित मुश्किल हालात छिन इंसान पान पानी अनान

राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं।

2480364। ये थी एक इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समीन, आइए समाप्त करते हैं एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं हूं आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
2: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
2: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
3: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
2: जी।
3: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
2: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
3: जी, आपको बिल्कुल याद है, पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
2: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
3: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
2: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
3: जी।
2: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
3: जी जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
2: बिल्कुल। फिर होता यह है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
3: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
2: बिल्कुल।
3: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
2: जी जी जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
3: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
2: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है।

0: लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ
1: जी।
0: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
1: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
0: जी
1: समुद्र के पानी के खारा होने का,
0: बताइए।
1: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
0: जी
1: जो पानी में नमक मिलाते हैं, यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है।
0: जी ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा, वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
1: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है,
0: जी
1: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
0: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
0: जी
1: तो श्रोताओ, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ई मेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper?

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी-कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सविन, आप समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग। सविन, हमारे प्रोग्रामों के हवाले से एक इतला समाज फरमाए। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के आज के शुमारे की रिकॉर्डिंग जो है अभी यानी दिन के 2 बजे से 3 बजे तक हो रही है। इस प्रोग्राम में जिस मौजू का हमने आज इंतखाब किया है वो है कैंसर से बचाओ। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदु किया है नामवर माहिर सरतान डॉक्टर शबनम बशीर को। अगर आप हमारे मेहमान मुअल्लिस से मौजू की मुनासिबत से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो राबिता करें फोन नंबर 01942480364 पर। जी हाँ समीन, फोन नंबर एक मरतबा फिर समाप्त फरमाएं 01942480364 पर। समीन, वक्त एक मरतबा फिर नोट फरमाएं आज दिन में 2 बजे से 3 बजे तक। ये थी इतला हमारे प्रोग्रामों के हवाले से।

समीन विशाल शेखर की मौसीकी में, विशाल शेखर की मौसीकी में आपने रजत अरोरा का लिखा नगमा समाअत किया, कमाल खान की बेमिसाल आवाज़, और ये फिल्म का नाम था द डर्टी पिक्चर। आइए अब शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में समाअत करते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिल्म का नाम है पीके।

फिर मेरा भाई आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। समय 1:50 हुआ चाहते हैं। चंद ही लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त करेंगे खबरें। जरा सा इंतजार फरमाएं।

आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत कर रहे हैं। कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद चार रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में टीवी के आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शाम आसाम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।

0: धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के इस मुबैना बयान की मजम्मत की है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा

0: धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के इस मुबैना बयान की मजम्मत की है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जवाबदेही की मजाहमत और आवाम के फैसले को कबूल करने से इनकार करना बंगाल में जमहूरी निजाम को कमजोर करने की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ आवाम के फैसले को मुस्तरद कर रही हैं बल्कि चुनाव कमीशन और सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे इदारों की साख को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों का अहाता करने वाले रेलवे प्रोजेक्टों के लिए मरकजी काबिना की मंजूरी का खैर मकदम किया है। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, कामकाज की कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, नीज मुल्क के बुनियादी ढांचे और इक्तसादी तरक्की को भी फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से मुल्क भर के अहम सियाहती मकामात तक पहुंचना मजीद आसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने का काबिना के फैसले को भी सराहा। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ एक फर्द जुर्म दाखिल की है। ये फर्द जुर्म अवामी मकामात पर लोगों को बायोलॉजिकल जहर देने की ISIS की एक साजिश में इन लोगों के मुलविस होने के सिलसिले में दाखिल की गई है। अमेरिका में भारत निजाद रिपब्लिकन रहनुमा विवेक रामास्वामी ने ओहियो के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन नामजद 87% वोट हासिल करके जीत ली है। उन्होंने केसी पुत्श को शिकस्त दी। अब आइंदा नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एमी एक्सटन से होगा। रामास्वामी ने 2024 में मुख्तसर अरसे के लिए ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बाद में उनकी हिमायत का ऐलान किया। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रात भर होने वाले रूस के हमलों में 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये हमले इस एकतरफा जंगबंदी से चंद घंटे कबल हुए जो यूक्रेन की जानिब से तजवीज की गई थी और आधी रात से नाफिज होना था। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी इलाके, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाज मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान व निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बाज मकामात पर गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल नई दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम के सदर के साथ बातचीत की। कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद 4 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में TVK आज शाम हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करेगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने 15वीं रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth and medical product regulations. Hectic parleys continue in Tamil Nadu among parties as TVK is set to stake claim for forming government despite lack of majority figure. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tenders resignation. Swearing-in ceremony of the new government to take place after 11th of May. India and European Union launch joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity. IMD forecasts heavy rainfall over a

समीन आपने ये बहुत ही पुराना और प्यारा सा नगमा समाप्त किया। इससे इसकी मौसी की तरतीब दी है हेमंत कुमार ने। ये आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम चंपा कली। उम्मीद करते हैं किसी न किसी को ये ज़रूर किसी न किसी के दिल को छू लिया होगा ये नगमा। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, समाप्त कीजिए।

हम से आया न गया, तुम से बुलाया न गया, फासला दोनों से इस प्यार में मिटाया न गया। दोस्तों, ये आपने समाप्त किया फिल्म देख कबीरा रोया। मदन मोहन की मौसीकी में ये थी तलत महमूद की आवाज़।

سمعنا आपने लता मंगेशकर की पुरकशिश आवाज़ में ये नगमा समाप्त किया. फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई.

समीन, आपने आशा भोसले किशोर कुमार को सुना, ये दो गाना आपने इन्हीं की आवाज़ों में सुना। फिल्म का नाम दिल्ली का ठग। जी हाँ दोस्तों, पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। ये जो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वेव मीटर थे एफ एम शहरिया 5 बैंड। समीन मोहतरम, आज मारूफ सूफी शेर लाल आरगम सबन योम विसाल, तो अथ मौक़ पर वलू बोजो।

تہندی کلام فنکار چھے غلام نبی بلبل تو تہند ہم نواز.

Semina şu maruf sufi şiir Lala Ergem Sabun Yom-e Visal Tas Mokas Par Bozu Tehti Hundi Kalam Sarakar Es Gulam Nabi Bulbul Tehti Hindi Hamnawa Ya Akashvani Ka Srinagar Station Hai Medium Wave Aur FM 103.5 MHz Par Samin Sapher Ke Thik 3 Baj Rahe Hain अब पेश होता है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

वाफियत होंगे और अपना प्रोग्राम सुन रहे होंगे। आइए दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए इस नगमे से।

जय हिंद फिल्म फौजी भाइयों, फिल्मी नकमे लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सुनने वाले बखैर

फाजी भाइयों, आनंद बख्शी के अशार आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में समाप्त किए। प्रोग्राम का शुरुआती नगमा आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

वाजपेयी को आपने मोहम्मद रफी को सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं शब्बीर कुमार का गाया नगमा। फिल्म का नाम है नसीब अपना अपना।

फौजी भाई हो, आपने शब्बीर कुमार को सुना, फिल्म का नाम नसीब अपना अपना। आइए कमाल हसन के अशआर समाप्त करते हैं। रवि की मौसीकी में आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया नगमा। फिल्म का नाम, जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि फिल्म का नाम है दहलीज़।

फौजी भाई, क्यों आपको याद दिला दें कि आप इस वक्त फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से आपके अपने प्रोग्राम में।

फौजी भाइयों, आपने हिंदी भर कैशार समाज के उषा खन्ना की मौसीकी में ये आवाज़ें थीं आशा भोसले और मनहर की। इस नगमे को हमने आपके लिए चुना था फिल्म होटल से। दोस्तों, यह है इस नशस्त की आखिरी पेशकश, आपसे लेना चाहेंगे विदा। इंशाल्लाह इसी वादे के साथ के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकी होंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान लाहौर फरहान को इजाज़त। खुदा हाफिज़, जय हिंद।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 3:50 हुआ चाहते हैं, आइए समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं बसारत कुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और वियतनाम ने मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को बढ़ावा देने के लिए मुतअद्दिद मफाहमत नामों पर किए दस्तखत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की समाज के सभी तबकों से नशा मुक्त अभियान में शिद्दत लाने की अपील। जम्मू कश्मीर बैंक को पिछले माली साल के दौरान 23.63 अरब रुपए का मुनाफा हासिल। और पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना के तहत श्रीनगर जिले में पिछले माली वर्ष के दौरान 5,300 सोलर रूफ टॉप नस्ल। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और वियतनाम ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, अर्जियात, तिब्बी पैदावार, कल्चर, सियाहत और दीगर अहम शोबों में शराकत दारी को बढ़ावा देने के लिए कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए। ये दस्तखत आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर टू लाम ने किए। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान दोनों इलाकाई और आलमी नवियत के कई मामलों पर तबादला ख्याल किया। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा,
2: दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने जा रहे हैं। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों

0: को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वस्ती कश्मीर के बड़गाम के हर एक कुंबे, समाजी तंजीम, निज रूहानी और सियासी लीडरों से अपील की है कि वो जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में शिद्दत लाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया पूरी मजबूती के साथ मुनशियात के लानों को उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। बड़गाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के एक हिस्से के तौर पर निकाली गई बड़ी पदयात्रा में शिरकत के बाद लोगों से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा,
2: ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बड़गाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और मैं आज हर बड़गाम वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए।
1: जम्मू कश्मीर को मुनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकारी इकदाम के बारे में आज एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद ऋषी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द रेडियो कश्मीर न्यूज सरबरा। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं जो हमें घर घर पहुंचता है। हम पेरेंट्स अवेयर हुए हैं कि हमें क्या करना है, हमें किन चीजों के लिहाज से एहतियात करना है, अपने बच्चों को और इस नशे से दूर रखना है। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, जो यहाँ के सरबरा है, कि जो ये नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा जो मुफ्त है यहाँ से दूर किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को इस नशे से दूर किया जाएगा।
1: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की यूटी सतह की 17वीं मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मुनशियात मुखालिफ कवानीन की अमलावरी, ड्रग्स स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई और नशे के आदि अपराध की बाजाबादकारी के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में कवानीन की सख्त अमलावरी की हिदायत दी। मीटिंग में डीजीपी नलिन प्रभात और इंतजामिया के कई आला अफसरान मौजूद थे। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने पामपुर हलके का दौरा करके वहां मुतअद्दिद तरक्कियाती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पारीगाम में एक डिजिटल एक्सरे यूनिट और थायराइड एनालाइजर का भी इफ्तिताह किया।
5: पेशेंट केयर में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल हो और यहाँ जो दूर दराज इलाका के जो लोग यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे टाइम पे इलाज मिले। जब हमने सरकार संभाल लिया उस वक्त 524 के करीब नए डॉक्टर्स जो है वो हमने लगाए हैं ताकि दूर दराज इलाकों में हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो सही हो सके। और जरूरत है, अभी ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो पोस्ट है वो रेफर किए गए, वहाँ से कुछ पोस्ट आए हैं सेंक्शन होके और कुछ अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी जब आएंगे तो ये जो कमी है स्टाफ की, ये कमी भी दूर इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाएगी और काफी हद तक हमने इस पे काम किया है।
1: जम्मू कश्मीर बैंक ने मुसलसल चौथे माली साल में रिकॉर्ड मुनाफे की शानदार रिवायत को बरकरार रखते हुए साल 2025-26 के लिए अपनी तारीख का सबसे ज्यादा सालाना मुनाफा 23,63,47,00,000 रुपए दर्ज किया है। बैंक ने माली साल का इख्ताम भी एक शानदार समाही कारकर्दगी के साथ किया, जहां तकरीबन 800 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया गया। इस हवाले से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,

0: जम्मू कश्मीर बैंक के इस शानदार परफॉर्मेंस और हिस्टोरिक प्रॉफिट पर हम सभी को गर्व है, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, प्रोमोटर्स और बैंक के एम्प्लॉइज को दिल से बधाई देता हूँ। 2,363 करोड़ का ये प्रॉफिट सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, बल्कि आपके भरोसे, शानदार टीम वर्क और बेहतर स्ट्रेटेजीज का नतीजा है। आप इसी तरह J&K बैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। हम वादा करते हैं कि इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का फायदा होगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा।
1: प्रयागराज उत्तर प्रदेश में दिफा से मुतल्लिक रक्षा त्रिवेणी संगम वी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री

0: कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। हम वादा करते हैं कि इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का फायदा होगा और तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा।
1: प्रयागराज उत्तर प्रदेश में दिफा से मुतालिक रक्षा त्रिवेणी संगम वी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड सोलिजरिंग कॉन के मौजू पर नॉर्टेक सिम्पोजियम मुनाकिद हुआ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 4 मई को इसका इफ्तिताह किया। सिम्पोजियम के बारे में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कहा,
2: इस सिम्पोजियम में आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण ऑपरेशनल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए स्वदेशी तकनीकी सॉल्यूशंस की पहचान कर सकेंगे। आज हम तेजी से बदलती हुई युद्ध प्रणाली के ऐसे मोड़ पर हैं जहां प्रौद्योगिकी सिर्फ युक्तियों में मदद नहीं करती बल्कि उन्हें आकार देती है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा गत वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की घोषणा एवं उनके मार्गदर्शन में हम सबके सामूहिक प्रयासों ने आइडियाज और इनोवेशन के बीच की दूरी को मिटा दिया है।
1: जम्मू कश्मीर के एक मारूफ सहाफी और मुसन्निफ डॉक्टर राजेश कृष्ण भट्ट ने मुल्क के एक नामवर सोशियोलॉजिस्ट एमएन श्रीनिवास के काम सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया का पहली मरतबा कश्मीरी जुबान में तर्जुमा किया है। ये तर्जुमा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू के नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया गया। इस हवाले से डॉक्टर राजेश कृष्ण भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: जो ये मशहूर सोशियोलॉजिस्ट है भारत के हिंदुस्तान के रहे हैं मिस्टर एमएन श्रीनिवास, इसने एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका जिक्र हर यूनिवर्सिटी में किया जाता है, हर डिपार्टमेंट में किया जाता है और इसकी बेस लेके जो आज की मॉडर्न सोशियोलॉजी का एक जो कंसेप्ट है वो इन्होंने 1970 के दशक में दिया था। जो ये किताब उन्होंने बेसिकली लिखी है ये अभी तक 22 जबानों में उसका तर्जुमा हुआ है हिंदुस्तानी भाषाओं में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो मैसूर में इनका एक ऑफिस है, उनकी तरफ से ये एक प्रोजेक्ट आया था कुछ साल पहले कि इसमें इतनी भाषाओं में हो चुका था, इतनी जुबानों में इसका ट्रांसलेशन हो गया था, बट कश्मीरी में कोई तैयार नहीं था आने के लिए। रीजन ये था कि बहुत कम लोग नस्तलिक जानते थे या इसमें कुछ संस्कृत के जो वर्ड्स है और वही आदमी कर सकता था ज्यादातर, जिसको दोनों जुबानों पे थोड़ा बहुत अबूर हो। तो मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया इस चीज को लेने के लिए क्योंकि जो श्रीनिवासन साहब का एक बहुत बड़ा एक किरदार रहा है, उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है।
1: डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने केपीडीसीएल के इंजीनियरों, मुख्तलिफ बैंकों के अहदेदारों और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से वापस वेंडर्स के साथ एक मीटिंग में जिले में इस स्कीम के लिए मुकर्रर किए गए अहदाफ और हौसलियाबियों का जायजा लिया। डीसी को बताया गया कि पिछले माली वर्ष के दौरान श्रीनगर जिले में इस योजना के तहत 5,300 सोलर रूफ टॉप नस्ब किए गए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन 4:20।
4: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सपेर के ठीक 4 बज रहे हैं। समाप्त कीजिए आज का पहाड़ी प्रोग्राम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
5: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आईदा पारी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर हाँ और सारियां को अदब तायत आजीम नाल अस्सलाम अलैकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जी तुस सारे खैर खरीद नाल होसो। सामीन अस जानदे हां जी तुसन को अपने इस मनपसंद प्रोग्राम की अड़ीक रही है, अस भी कोशिश करदे हां जी इस प्रोग्राम बिच तुस्ते

0: करते हुए आखिया।
1: दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने जा रहे हैं। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन वस्ती कश्मीर दे जिला बडगाम दे आरे कुंबे समाजी तंजीम दे अलावा रूहानी और सियासी लीडरां थी अपील कीती है जे उस जिले बिच चलाए जुर रही नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान बिच तेजी आनन। उन्हां सुन यकीन दिता जे इंतजामिया पूरी मजबूती दे नाल नशे दी लानत को जड़ू काट के फेंकना वास्ते पुरअजम है। बडगाम बिच नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान दे एक हिस्से दे तौर उते कढ़ी गई बड़ी पज यात्रा भी शिरकत दे बाद लोकां नाल खिताब करदे होया मनोज सिन्हा सुन आखिया।
2: मैं बडगाम में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बडगाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और मैं आज हर बडगाम वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर

0: सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए।
1: जम्मू कश्मीर को मंशियाती बिदती पा करने वास्ते 100 त्याड़ियां उत्ते मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान दे तहत सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत ही दूर रखने वास्ते दरकार इकदाम के बारे में एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद रेशी सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करदे हुए आख्या।
3: आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द रेडियो कश्मीर न्यूज सरबरा। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं जो हमें घर घर पहुंचता है। हम अवेयर हुए, हम पेरेंट्स अवेयर हुए हैं कि हमें क्या करना है, हमें किन चीजों के लिहाज से एहतियात करना है, अपने बच्चों को और इस नशे से दूर रखना है। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कि सरबरा है कि जो ये नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा यहाँ से दूर किया जाए।
1: इस दौरान जम्मू व कश्मीर पुलिस की तरफ ड्रग समगलरों के खिलाफ न थमने वाला कार्रवाइयां का सिलसिला जारी है। पुलिस हुण इस सिलसिले में सोपोर, अनंतनाग, बारामूला और आंतीपुरा में मजीद 7 समगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे थी मंशियात की कुछ मकदार बरामद की है। शुमाली कश्मीर के DIG डॉक्टर विनोद कुमार सुन जिला बारामूला का दौरा करके उथे सलामती मंजरनामे के अलावा नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान के तहत होना तोनी की पेशरफ का जायजा किया। अनंतनाग पुलिस सुन खशखाश की काश्त को जाया करके NDPS एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए हैं। अंतिपुरा बिच भी पुलिस की तरफ इसी तरह की कई कार्रवाइया अमल में आदिया गई। अनंतनाग पुलिस सुन जालडारा डूरू दे रहने वाले फयाज अहमद डार नाँ दे एक समगलर को GPS वाला एक कड़ा बताया है। उधर अंदवाड़ा बिच पुलिस की तरफ मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने वास्ते कई जानकारी प्रोग्राम मुनाकद किए गए। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਔਰ DTH ਉਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू सुन नारको कोआर्डिनेशन सेंटर दी UT सतह दी 17वीं मीटिंग भी जम्मू व कश्मीर बिच मंशियात मुखालिफ कानूना दी अमल आवरी, ड्रग समगलरां दे खिलाफ कार्रवाई ते नशे बिच मुबतला नफरां दी बाजाबादकारी वास्ते कीते जुर्रे इकदामात दा जायजा कीता। चीफ सेक्रेटरी सुन इस सिलसिले बिच कानूना दी सख्त अमल आवरी दी हदायत दित्ती। मीटिंग बिच DGP नलिन प्रभात और इंतजामिया दे आला अफसरान मौजूद आसे। सेहत तरतीबी तालीम दी वजीर सकीना इतू सुन पांपोर हल्के दा दौरा करके उतै कई तरक्याती प्रोजेक्टां दी पेशरफ दा जायजा कैदा। इस मौके उतै उना सुन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पारीगाम बिच एक डिजिटल एक्सरे यूनिट और थायराइड एनालाइजर दा भी इफ्तिताह कीता।
4: पेशेंट केयर में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल हो और यहाँ जो दूर दराज इलाका के जो लोग यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे टाइम पे इलाज मिले। जब हमने सरकार संभाल लिया उस वक्त 524 के करीब नए डॉक्टर्स जो है वो हमने लगाए हैं ताकि दूर दराज इलाकों में हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो सही हो सके। और जरूरत है, अभी ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को जो पोस्ट है वो रेफर किए गए, वहाँ से कुछ पोस्ट आए हैं सेंक्शन होके और कुछ अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी जब आएंगे तो ये जो कमी है स्टाफ की ये कमी भी दूर इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाएगी और काफी हद तक हमने इस पे काम किया है।
1: जम्मू व कश्मीर बैंक सुन लगातार चौथे माली साल बिच रिकॉर्ड नफे दी शानदार रवायत को बरकरार रखदे होया साल 2025-26 वास्ते अपने तारीख दा सब ती ज्यादा सालाना नफा 23 अरब 63 करोड़ 47 लाख रुपए दर्ज कीता है। बैंक सुन माली साल दा इख्तिताम भी एक शानदार कारकर्दगी दे नाल कीता जिथा तकरीबन 800 करोड़ रुपए दा नफा हासिल होया। इस हवाले थी बैंक दे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चैटर्जी सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया आख्या।
5: جموں کشمیر بینک کے اس شاندار پرفارمنس اور ہسٹورک پروفٹ پر ہم سبھی کو گرو ہے، جس کے لیے میں اپنے سبھی کسٹمرز، شیئر ہولڈرز، ریگولیٹرز، پروموٹرز اور بینک کے امپلائیز کو دل سے بدھائی۔

अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज को गोजरी प्रोग्राम लेके आम थारी खिदमत माजरा। उम्मीद करां कि तुम बिल्कुल खैर आफियत नाल वेंगा और माँ बोली में पेश किया जाना लो ये गोजरी प्रोग्राम तसलसल के ना सुनता वेंगा। सामीन, जहनी सेहत इंसानी जिंदगी को एक नहायत अहम मगर अक्सर नज़रअंदाज किया जाना लो पहलू है। जिस तरह जिस्मानी सेहत के बगैर इंसान एक सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते, इसी तरह अच्छी जहनी सेहत के बगैर भी जिंदगी नामुकम्मल और मुश्किलात से भरपूर हो जाए। जहनी सेहत की मुराद इंसान की जहनी, जज्बाती और नफसियाती हालत है, जिड़ी इसका ख्याल

जी सामीन, तमने नगमो सुनियो। हाले आज का प्रोग्राम को वक्त मुकुर नायो, प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, अपना मेज़बान शबीर अहमद पसवाल ना। दियो इजाज़त। अच्छा जी, रब राखो।

आप समाप्त कर रहे थे गोजरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है वसीम फारूक। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 5:50 हो रहे हैं। आइए अब गोजरी में खबरें सुनते हैं। गोजरी खबरों के फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा। पहले खबरें गोजरी में।

0: पहचान कर सकेंगे। आज हम तेजी से बदलती हुई युद्ध प्रणाली के ऐसे मोड़ पर हैं जहां प्रौद्योगिकी सिर्फ युक्तियों में मदद नहीं करती बल्कि उन्हें आकार देती है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा गत वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की घोषणा एवं उनके मार्गदर्शन में हम सबके सामूहिक प्रयासों ने आइडियाज और इनोवेशन के बीच की दूरी को मिटा दिया है।
1: जम्मू कश्मीर का एक मारू सहाफी ते मुसन्नफ डॉक्टर राजेश कृष्ण भट्ट ने मुल्क का एक नामवर सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास को कम सोशल चेंज मॉडर्न इंडिया को पहली दफा कश्मीरी जबान में तर्जमो कियो है। यो तर्जमो सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू का नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल कियो गयो। इस हवाला ते डॉक्टर राजेश कृष्ण भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गलकर्ता में कियो।
2: जम्मू कश्मीर की बात करें और खासकर कश्मीर की बात, जहां पे अभी जो चेंजेस में फिनोमिना में कश्मीर चला जा रहा है सोशल सिस्टम को लेके, सोशल इवोल्यूशन नया आ रहा है, तो ये किताब एक फिट आती है उस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कशगम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीकी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि

0: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तोलाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद 3रे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहातार 8.8 मीटर ते FM 2 73.5 मेगाहर्ट्ज संकट शबजत 5 मिनट सबद पेश गमी बानि हिंद खतर अजुक प्रोग्राम।

من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

0: शर्माहन।
1: इस सिंपोजियम में आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण ऑपरेशनल चैलेंजेस का समाधान करने के लिए स्वदेशी तकनीकी सॉल्यूशंस की पहचान कर सकेंगे। आज हम तेजी से बदलती हुई युद्ध प्रणाली के ऐसे मोड़ पर हैं जहां प्रौद्योगिकी सिर्फ युक्तियों में मदद नहीं करती बल्कि उन्हें आकार देती है। माननीय रक्षा मंत्री द्वारा गत वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स की घोषणा एवं उनके मार्गदर्शन में हम सबके सामूहिक प्रयासों ने आइडियाज और इनोवेशन के बीच की दूरी को मिटा दिया है।
0: अत दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथन आज अत सिंपोजियम खिताब करान वोनमुत वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंधिस कयात सरकार बचाव सलाहियतन पोशर दिन किस वादस पे कायम। तमो वो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोरस मज पास करोड़ रुपयन हंद मनसूब अमलान चोरन रियासतन तो अकिस मरकजी इंतजाम वालिस इलाकस मज हाल कन असेंबली चुनावन हंद नतीजे यन पत नव सरकार तश्कील दिन च अमल मज वुच आमच तमिलनाडुस मज कर टी वी के पार्टी आज शाम नव सरकार बनान दावा पेश तमिल अगा वेत्री काजागम टी वी के हाल कन असेंबली चुनाव मज अखत अठ सीट जेनम पार्टी हंदिस बानी सी जोजफ सिंह सरबराही मज नव सरकार बनाने बापत सयासी कदबात मज वाम सी जोजफ करन आज शाम रियासत किस गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर सत मुलाकात करन सरकार बनान दावा पेश अ दौरान कांग्रेसन यम निश पांच असेंबली मेम्बर टी वी के पनी हिमायत दिन ऐलान कर्मुत हुपर मगरबी बंगालस मज असेंबली चुनाव हंद नतीजन हंद ऐलान गन पत तो नवि सरकार च हलफ बरदारी ब्रो रियाती इंतजामिया तैयारी तयस पे बीजेपी कन वसीलन वन मरकजी दाखिल वजीर करन आज कोलकाता मज नवन मुंतखब कर आमत बीजेपी असेंबली मेम्बरन सलाकात पत बीजेपी कानून साज पार्टी हंदिस लीडर सुंद ऐलान अ दौरान तलीम हंद वजीर धर्मेंद्र प्रधानन तृणमूल कांग्रेस सरबरा ममता बनर्जी हंद यम बयान मजम्मत करम जम दिन इस्तीफा अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज मरकजी वजीरन वोनमुत तृणमूल कांग्रेस दस लूकन हंद फैसल कबूल न कर मगरबी बंगालस मज जमहूरी निजाम कमजोर कर मिसाल आसाम के वजीर अला हिमंत बिस्वा शर्मा कोर आज गुवाहाटी मज राजभवन रियासत किस गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पुन इस्तीफा पेश यम पत रियासत अंदर नव सरकार बनान बापत वत हमवार सपजम आसाम मज एन डी ए यन अखत जीट जीन वाजे अक्सरियत हासिल करम कांग्रेसन अत कनवु सीट हासिल करम वजीर अजम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना कन कनवाह जिलन हंद व्याहत कर वाल रेलवे प्रोजेक्ट हंद बापत मरकजी काबीना च मंजूरी हंद खैर मकदम कर्मुत तमो वो इन प्रोजेक्ट हंद बरकत द्रुस मुल्कस मज अहम सयाहती जायन तम वात मजीद आसान तमो वो इम प्रोजेक्ट बनावन काम कारस तो कारकरदगी मज इजाफ यकीनी यल जन मुल्क किस बुनियादी ढांचस तो इकसदी तरक्की तोचर मिले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हंद नो दौर चलान तो शहरी इलाकन सरहदी इलाकन हज तरक्की कन खास जोन दिन सांबा जिल किस वाइब्रेंट सरहदी गाम रेगलस मज कहन तरक्की प्रोजेक्टन कन कन लागन पत लुक इजतमास खिताब करान वोन मनोज सिन्हा सरहदी गाम सन आखिरी गाम बल्कि गोडन के सफे गाम तो अमन इलाकन हज पोशवनी तरक्की बापत अजम कर्मुत अत मौकस पे कर लेफ्टिनेंट गवर्नरन कहन एस पी ओन नौकरी हंद आर्डर तो मकमी नौजवानन मिशन युवा एच ए डी पी तो कैचन दोम स्कीम मंजूरी हज लेटर पेश तमो कुर गगवाल सांबास मज नरसिंह देव संस्कृत गुरुकुल इफ्तिता जम्मू कश्मीर मंशियात के बित निश पा कर बापत अखत दोहन पे मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत सरगर्मी तेजी सान जारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद पैगाम
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट उसका ड्राइविंग लाइसेंस कार आधार नंबर उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चलाचल संपर्क

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, मुगल रोड पर गुज़श्ता दिनों पेश आए हादसे में लापता 2 अफराद की लाशें बरामद, हादसे में कुल 4 अफराद की मौत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा के सरहदी गांव रेगल का किया दौरा, कई मंसूबों का रखा संग बुनियाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी मेंबर असम्बली पार्टी छोड़ने वाला नहीं है, उमर अब्दुल्ला का इजहार ख्याल। और भी कई मौजूद थे आज के शेरबीन में, एक मुख्तसर वक्त के बाद।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: होली का ना अलग ही मजा है, लोरी ना मिठाई खाओ।
5: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
4: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
5: अच्छा भाभी,
4: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
5: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
6: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
7: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है, और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
8: पर क्या कर सकते हैं?
7: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
9: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
10: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
11: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
10: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
11: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
10: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
11: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना।

0: कैसे हुआ, कहाँ से लाया?
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
0: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
0: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में। 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: शर्बीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समी जम्मू कश्मीर के लखनऊ गवर्नर मनोज सिन्हा ने सांबा जिले के सरहदी गांव रीगल का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। इन मनसूबों का मकसद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और आवामी सहूलियात को बेहतर बनाना है, ताकि सरहदी इलाके में रहने वाले शहरियों को बेहतर मयारी जिंदगी फराहम किया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी गांव अब मुल्क के आखिरी गांव नहीं बल्कि पहले गांव हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंतजामिया सरहदी इलाकों की जामे तरक्की के लिए पूरा अज़्म है, जिसमें बुनियादी ढांचे, राब्त सहूलियात, अवामी सहूलियतें और रोजगार के मौके पर खसूसी तवज्जो देना शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी का मकसद सरहदी इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में शामिल करना है, ताकि वहां के अवाम को बेहतर सहूलियात और मौके दस्तियाब कराए जा सकें। अब एक और मौसम। समीन पूंछ के मंडी तहसील के साथरा इलाके में आज दो गाड़ियों के दरमियान हुई टक्कर के नतीजे में 4 अफराद के जख्मी होने की खबरें हैं। जख्मियों की हालत मुस्तकम बताई जा रही है। इधर गुजश्ता दिनों मुगल रोड पर शदीद बर्फबारी के बाद लापता हुई गाड़ी में सवार मजीद 2 अफराद की लाशें बाजियाब कराई गई हैं, जबकि गुजश्ता रोज ही 2 अफराद की लाशें मकामी नाले से बाजियाब कराई गई थी। मजीद तफसीलात पूंछ से केडी मैनी की जबानी।
4: SDM स्वर्ण कोट मोहम्मद फारूक के मुताबिक बदकिस्मत स्विफ्ट गाड़ी नंबर JKD12-9875 को 4 मई को छत्ता पानी और रताछम के दरमियान जो हादसा पेश आया था, उसमें सफर करने वाले और जाम भाग होने वाले चारों अफराद के जिस्म खाकी हासिल करके मजीद कार्रवाई के लिए स्वर्ण कोट भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कार में मौजूद अफराद यानी शौकत हुसैन ड्राइवर जो हाड़ी बुड्ढा स्वर्ण कोट का रहने वाला था और 3 सवारियां जो मंगनाड़ पुंछ गांव की थी यानी मोहम्मद अकबर जो कैंसर का मरीज था और इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया जा रहा था, उसका बेटा मोहम्मद शबीर और एक रिश्तेदार अब्दुल मजीद स्वार थे जो हादसे का शिकार हो गए। याद रहे कि ये गाड़ी 4 मई को दिन के 1 बजे पुंछ से श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। उसने 4 बजे के करीब चंडीगढ़ पुलिस चौकी को पार किया और पीर गली की तरफ बढ़ी। इसी दौरान पीर पास के आर पार इलाके को जबरदस्त बर्फानी तूफान ने लड़गे में ले लिया। उस वक्त तकरीबन 300 के करीब छोटी गाड़ियां तूफान की जद में आ गईं, जिसमें ये बदकिस्मत गाड़ी भी शामिल थी। जब ये गाड़ी छत्ता पानी और रताछम के मोड़ काट रही थी तो उछल का 300 फुट नीचे दिलवाल पर लुढ़कती हुई नाले में जा गिरी और इसके परखच्चे उड़ गए। इसी दौरान घर के अफराद ने उन्हें टेलीफोन करने की कोशिश की, मगर एक टेलीफोन की घंटी बज रही थी लेकिन कोई उठा ना रहा था। चुनाचे 5 मई को चंडीगढ़ पुलिस चौकी को इतला दी गई और चौकी ऑफिसर रोहित मनहास इमदादी टीम के साथ पीर गली की तरफ बढ़े और हादसा वाली जगह पहुँच कर शाम तक 2 अफराद के जिस्से खाकी बरामद करने में कामयाब हुए, जबकि आज सारा दिन जिला पुलिस, SDRF, आर्मी और मकामी आवाम ने मिलकर जबरदस्त खोज बिखियार के बाद बाकी 2 अफराद की लाशें भी बरामद करने में कामयाबी हासिल कर दी। इस बारे में शहरदीन को जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि हादसे में जान बहक होने वाले अफराद के लवायकीन के हक में आज रेड क्रॉस की तरफ से इमदाद की गई है, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से भी लवायकीन की इमदाद की जाएगी।
3: ये थे पुंछ से के जी मैंने शेरवीन, अब श्रीनगर से सुन रहे हैं। समी जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद MLAs के BJP में शामिल होने की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि न वो और न ही उनकी हुकूमत किसी के कहने पर काम करती है। उन्होंने ये बात गुलमर्ग के दौरे के दौरान कही। عمر عبداللہ نے کہا کہ اسمبلی میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ این سی کا کوئی ایم ایل اے بی جے پی کی مدد کے لیے پارٹی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ عناصر بی جے پی

0: इशारों पर काम कर रहे हैं और ये बात आरटीआई के जरिए भी साबित हो चुकी है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि वो किसी और तंजीम के कहने पर काम नहीं करते हैं। वजरे की वजीराला ने आज टंगमर्ग में अवामी बहबूद के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा कई अफसरान भी थे। तफसीलात करामत कुयूम से।
1: किसी भी मेंबर असेंबली का पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। न मैं खामोश हूँ और न ही मेरी हुकूमत खामोश है। जब जरूरत महसूस होगी तो काबिना में रद्द बदल करेंगे। इन ख्यालात का इजहार आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने टंगमर्ग डिग्री कॉलेज में मल्टीपर्पज स्टेडियम और नई तामीर शुदा अस्पताल बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौका पर किया। अपने मुखालिफीन पर सख्त वार करते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये आरटीए में सामने आ गया और इस चीज को छुपाने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबरान असेंबली के जाने की बात फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात होती तो फिर मैं इन तकरीबा में नहीं होता।
2: मैं किसी दूसरी तंजीम के कहने के मुताबिक जो है अपना काम नहीं करता। मुझे जब कुछ कहना होता है मैं कहता हूँ। ना मैं खामोश हूँ ना मेरी हुकूमत खामोश है। जहाँ जहाँ मुद्दे आते हैं जिन पे हमें बोलना होता है हम बोलते हैं, या तो हुकूमत के तरफ से या तंजीम के तरफ से। आपको लगता कि अगर कुछ एमएलए जो है कुछ मिलने जाने की तैयारी कर रहे होते तो मैं यहाँ इन फंक्शनों में बैठा होता। बेबुनियाद बातें हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के कहने के मुताबिक जो है राज्यसभा में इलेक्शन में बीजेपी की मदद की और ये अब हम नहीं कह रहे हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत साबित हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा एमएलए नहीं है जो तंजीम को छोड़ के बीजेपी की मदद करने के लिए निकले। इस बात का जिक्र असेंबली में भी हुआ। काफी सारी जगह खोल दी गई है, चंद जगह रह गई है, उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता खोलने का काम जो है वो किया जाए।
1: उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज न होने की वजह से हमारे बच्चों को मजबूरी से बाहर के कॉलेजों का रुख करना पड़ता था और करीबन 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए फीस और दीगर अखराजात के जरिए इन पर खर्च होते थे। इस दफा असेंबली में हमने बिल पास करके यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को खोलने के लिए राह हमवार की, जिससे आइंदा हमारे बच्चों को बाहर के कॉलेजों का रुख न करना पड़े। और जब हालात खराब होते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वजीर आला के हमरा इस मौके पर काबीना वजीर सकीना मसूद यतु, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, मेंबर असेंबली गुलमर्ग पीरजादा फारूक अहमद शाह के अलावा महकमा तालीम व महकमा सेहत और जिला अफसरान भी मौजूद थे।
0: ये थे टंगमर्ग से करामत कयूम। शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हुमामा बड़गाम में आज एक बावकार और शानदार तकरीब का अहतमाम रहा, जिसमें स्कूल के सालाना मैगजीन आश 2025 की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर महकमा तालीम और जराए अबलाग से वाबस्ता मौजूद शख्सियात मौजूद रही। तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी, जबकि मेहमान जीवाकार के तौर प्रोग्राम सरबरा दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर तला जहांगीर रहमानी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर गुलाम मुहिद्दीन भट्ट, इंचार्ज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम मुश्ताक अहमद शेख, मीडिया एडवाइजर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर फयाज अहमद फयाज और दीगर शख्सियात शामिल थीं। इस मौके पर मुकर्ररीन ने बताया कि तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहने की जरूरत है और इस नवियत के अदबी और तालीमी प्लेटफार्म नौजवान नस्ल की फिक्री नशोनुमा खुद एतमादी और इजहार ख्याल के फरोग में अहम रोल अदा करते हैं। मैगजीन आश को 3 जबानों यानी अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी में शाया किया गया है। वाजरे के स्कूल अदालती बोर्ड स्कूल के प्रिंसिपल शबीर हुसैन रात्रि की सरबराही में तश्कील दिया गया है, जबकि मैगजीन के लिए चीफ एडिटर के फराइज मुसविर महराज ने अंजाम दिए। बोर्ड में रेहान अख्तर, नजाकत अंदली भी शामिल हैं। इस मौके पर स्कूल की तालिबात ने कश्मीरी फोक मौसीकी पेश करके हाजरीन से दाद हासिल की, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूल के साबिक और मौजूदा तलबा तालिबात में तौसीफी असनाद और इनामात भी तकसीम किए गए। समीन, जिला गांधरबल के गंड आकू इलाके में गुज़श्ता रोज एक रीछ ने खातून पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी खातून की शिनाख्त जाहिद बेगम जोजे मुमताज अहमद चीची साकिन गुंड आकू के तौर हुई है। कौंसल के साबिक मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल नायब सदर

0: और पायदारी की जमानत खबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
1: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
2: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
3: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
4: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
5: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
9: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
10: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
9: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आसपास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
10: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
9: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
11: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
12: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
11: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
12: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
11: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
12: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
11: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
12: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
11: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
12: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
11: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
13: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
14: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। साथ बजकर 30 मिनट हो रहे हैं। आइए अब खबरें सुनते हैं, पहले कश्मीरी, उसके फौरन बाद उर्दू में।

0: मजीद 7 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनीषियात की कुछ मकदार बरामद कर ली है। शुमाली कश्मीर की डीआईजी डॉक्टर विनोद कुमार ने जिला बारामूला का दौरा करके वहां सलामती मंजरनामे के अलावा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया। अनंतनाग पुलिस ने खशखाश की काश को जाया करके एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मामला दर्ज कर लिए हैं। अवंतीपुरा में भी पुलिस की तरफ से भी इसी तरह की कई कार्रवाइयां अमल में लाई गई। अनंतनाग पुलिस ने जालडोरा डूरा के रहने वाले फयाज अहमद डार नामी एक स्मगलर को जीपीएस वाला एक कड़ा पहनाया है। उधर हंडवाड़ा में पुलिस की जानिब से मनुष्यात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए कई जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इसी दौरान श्रीनगर पुलिस ने जाहिरपुरा हवल के रहने वाले हिलाल अहमद शेख नामी एक बदनामी जमाना स्मगलर के गैर कानूनी तामीराती असासे को मुनहदम किया है। इधर बारामूला पुलिस ने उड़ी में मुनशियात के खिलाफ एक जानकारी प्रोग्राम के अलावा टंगबंग में एक मैराथन का इनेकाद किया। इस बीच कुलगाम और अवंतीपुरा में पुलिस की तरफ से नार्को टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए K9 स्क्वाड तैनात किए गए हैं। इधर सोपोर में आज पुलिस की तरफ से जवाबित की पासदारी न करने की पादाश में 8वां मेडिकल स्टोर सरबमोहर कर दिया गया। इस दौरान गांधरबल बांडीपोरा शुपया और दीगर कई मकाम पर मनशियात के खिलाफ जानकारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहा। दरियासना शुपया पुलिस ने मदनियात की गैर कानूनी नक्काशी में मुलविस 7 गाड़ियों को जब्त करके 3 मामला दर्ज कर लिए हैं। इसी तरह की कार्रवाई के दौरान अनंतनाग के अशमुकाम और जंगलात मंडी इलाकों में भी 5 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलवामा जिले में भी मदनियात की गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 5 गाड़ियां जब्त करके 2 FIR दर्ज किए गए हैं। यह खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज आने आर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से मुतलिक जिला सतह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खसूसन बालतल के रास्ते यात्रा के अहसन और महफूज इनेकाद के लिए तमाम जरूरी कामों को पर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में आज एक तजती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें हाल ही में फौत हुए डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी के सरबरा प्रोफेसर अख्तर अली खान को खराज अकीदत अदा किया गया। मुकर्ररीन ने इस मौके पर सौगार कुंबे के साथ ताजियत का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। रेडियो टेलीविजन और थिएटर अदाकार रफीक अहमद मोतू को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज जे एंड के कल्चरल एकेडमी और ACT नामी सकाफती तंजीम के बाहमी इश्तराक से एक ताजियती इजलास मुनक़िद हुआ। मारूफ थिएटर डायरेक्टर और फिल्मसाज डॉक्टर अयाश आरिफ की सदारत में मुनक़िद इस इजलास में मोहम्मद अमीन भट्ट, गुल जावेद, मुश्ताक अली अहमद खान, नज़ीर जोश और मुश्ताक बाला ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने इस दौरान मरहूम को खराज अकीदत अदा करते हुए आर्ट के शोबे में उनकी खिदमात को उजागर किया। बाद में डॉक्टर अयाश आरिफ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए मरहूम को इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया।
1: ये हमारे लिए इंतहाई सदमा है कि हमने एक बेहतरीन इंसान, खुश गुफ्तार और एक अपराइट आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर को खोया है। करीब मैं उन्हें पिछले 40 साल से जानता हूँ। हमारी फ्रेटर्निटी में जितने भी लोग उसे जानते हैं कि बहुत प्यार करते थे उसके साथ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस कम उम्र में हमसे चले गए और इससे हमारी फ्रेटर्निटी, हमारे इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त धचका लगा, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। इसे पूर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी और जितने भी लोग उसके दोस्त हमरा हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, मदा हैं, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। खासकर उनके घर वालों के साथ हमारी हमदर्दी है।
0: इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के शोबे सहाफत की जानिब से आज सहाफत के आलमी हफ्ते की मुनासिबत से एक स्ट्रीट थिएटर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर हाइफा मोहम्मद की हिदायतकारी में न्यूज और नॉइस के मौजू से मुनाकिद इस ड्रामे में शोबे सहाफत के तालिब इल्मों ने किरदार अदा किया। इस मौके पर गलत मालूमात और डिजिटल प्लेटफार्मों पर गैर तहकीक शुदा मवाद के फैलाव के बढ़ते चैलेंज को उजागर किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने IIT जम्मू के बाहमी इश्तराक से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च अक्रॉस साइंटिफिक फील्ड्स के मौजू से एक लेक्चर मुनाकिद किया गया। ये लेक्चर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के शोबे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मेटीरियल्स के जाने माने साइंसदान प्रोफेसर चंद्रबास नारायण ने दिया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कई सरकर्दा इदारों के 85 शुरका ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के एक मारूफ सहाफी और मुसन्निफ डॉक्टर राजेश कृष्ण भट्ट ने मुल्क के एक नामवर सोशियोलॉजिस्ट एम

0: श्रीनिवास के काम सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया का पहली मरतबा कश्मीरी जुबान में तर्जमा किया है। यह तर्जमा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू के नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया गया। इस हवाले से डॉक्टर राजेश कृष्ण भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: जम्मू कश्मीर की बात करें और खासकर कश्मीर की बात, जहां पे अभी जो चेंजेस में फिनोमिना में कश्मीर चला जा रहा है, सोशल सिस्टम को लेके सोशल इवोल्यूशन नया आ रहा है, तो ये किताब एक फिट आती है उस दायरे में, उस सिस्टम में, ये जानने के लिए कि हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में कैसे चेंजेस आती गई। ये जो सोशल चेंज का जो सिस्टम है, वही चेंज इस वक्त जो पिछले खासकर हम 36 साल की बात करें कैसे इवॉल्व हो रही है, तो इस करके मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रोजेक्ट को अप्रूव भी किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि ये किताब अब छप गई है, जिसका मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, जो ऑलरेडी कश्मीरी जबान है, भाषा है, उसका इतना वास्ट अपना लिटरेचर है, उसमें थोड़ा सा एडिशन मैंने आपकी तरफ से।
0: प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर, गुलाम अली खटाना, साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह और पार्टी के साबिक सदर रविंदर रैना के हमरा पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में तंजीमी सतह की सिलसिलावार मीटिंगों से खिताब किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने पार्टी लीडरों से कहा है कि वह आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां शुरू करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला श्रीनगर की मजलिस आमला का आज का इजलास पार्टी की सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनाकिद हुआ। इसमें मौजूदा सियासी और इंतजामी सूरतहाल के साथ साथ लोगों के मसाइल और आने वाले पंचायती व बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: आज का तबसरा लेकर मैं मसरत शाह। हालिया दिनों में जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने गैर मामूली तौर पर कम वक्त में जो मकबूलियत हासिल की है, वो न सिर्फ जदीद सफरी सहूलियत की अहमियत को उजागर करती है, बल्कि बदलते हुए अवामी रुझानात की भी आकाश है। सिर्फ चंद दिनों के अंदर इस ट्रेन की नशस्तों की शरह का 82% से बढ़कर 96% तक पहुंच जाना इस बात का वाज़ह सबूत है कि मुसाफिर तेज, महफूज और मयारी सफर को तरजीह दे रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 16,000 से ज्यादा मुसाफिरों का इस सर्विस से मुस्तफीद होना इस अमर की निशानदेही करता है कि ये ट्रेन महज एक सफरी जरिया नहीं, बल्कि एक जदीद तजुर्बा बन चुकी है। मुसाफिरों की जानिब से फराहम करदा मस्बत आरा भी इस मकबूलियत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। सफर के दौरान जदीद सहूलियात ने इस ट्रेन को दीगर रिवायती ट्रेनों के मुकाबले में नुमाया बरतरी दी है। यही वजह है कि मुसाफिरों की बड़ी तादाद

वादी की आवाज प्रोग्राम आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। दुनिया के कई ममालिक ने करप्शन के खिलाफ कामयाब इकदाम किए हैं, जिसे साबित होता है कि अगर नीयत और निज़ाम मजबूत हो तो इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। इस हकीकत को महसूस करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि करप्शन और माफिया कल्चर पाकिस्तान के मसाइल की जड़ हैं, जिन्होंने मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। देरबाला में जलसे से खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 25 करोड़ आवाम पर चंद लोगों ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। उन्होंने कहा कि चंद खानदान मुख्तलिफ नामों, मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ नारों के साथ बार बार इख्तदार में आते हैं। IPPs, गैस, चीनी और आटा माफिया ने पाकिस्तान का घेराव कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि पेट्रोल की लेवी गरीब अवाम अदा करते हैं, नाजायज तरीके से 160 रुपए लेवी ली जा रही है। हाफिज नईम रहमान ने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल चलाने वाले साल में 550 अरब और तनख्वाहदार तबका सालाना 650 अरब रुपए का टैक्स देता है। उन्होंने कहा कि बड़े किसान और जागीरदार सालाना सिर्फ 10 से 12 अरब रुपए टैक्स देते हैं। ये टैक्स माफ कराते हैं और एक दूसरे का तहफ्फुज करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अदालती निज़ाम बगैर सिफारिश और दौलत के इंसाफ फराहम नहीं करता। गरीब अवाम हुसूल इंसाफ का ख्वाब भी नहीं देख सकते। सामईन, यह कहना मुनासिब होगा कि पाकिस्तान में करप्शन और माफिया का खात्मा एक मुश्किल मगर मुमकिन हदफ है। पाकिस्तान में करप्शन और माफिया के मसले को मजीद गहराई से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके तारीखी पस मंज़र, समाजी असरात और इंफरादी सतह पर उसके नतायज का भी जायज़ा लें। जब इदारे अपनी असल जिम्मेदारियों से हट जाएं और जाती या ग्रोही मफादात को तरजीह दी जाए तो करप्शन एक मामूल बन जाता है, और यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। समाजी सतह पर करप्शन ने अखलाकी अकदार को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जब एक नौजवान ये देखता है कि कामयाबी का रास्ता मेहनत के बजाय सिफारिश, रिश्वत या ताल्लुकात के जरिए आसान हो जाता है तो उसके जहन में दयानतदारी की अहमियत कम हो जाती है। इस तरह एक ऐसा माशरा तश्कील पाता है जहां उसूलों के बजाय मफादात को तरजीह दी जाती है। ये रवैया न सिर्फ इनफरादी किरदार को मुतासिर करता है बल्कि मजमूई तौर पर कौम की अखलाकी बुनियादों को भी कमज़ोर कर देता है। इसके नतीजे में मेरिट का निज़ाम तबाह हो जाता है और काबिल अफराद पीछे रह जाते हैं, जबकि नाअहल अफराद अहम ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। माशी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो करप्शन तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर देती है। जब सरकारी मनसूबों में बदउनवानी शामिल हो जाए तो उनकी लागत बढ़ जाती है और मियार कम हो जाता है।

वीर है। नौजवान नस्ल इस पूरे मामले में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और अगर उन्हें दुरुस्त समत फराहम की जाए तो वो करप्शन के खिलाफ एक मजबूत कुव्वत बन सकते हैं। ख्वातीन भी करप्शन के असरात से खास तौर पर पाकिस्तान में मुतासिर होती हैं। जब निज़ाम शिफाफ न हो तो ख्वातीन को अपने हकूक के हुसूल में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोज़गार, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में रुकावटें पैदा होती हैं जो उनकी तरक्की में हाइल होती हैं। एक मुनसिफाना और शिफाफ निज़ाम ख्वातीन को भी बराबर के मौके फराहम करता है जो किसी भी माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है। एहतिसाब के अमल में शिफाफियत और तसलसल नहायत अहम है। अगर एहतिसाब सिर्फ मखसूस अफराद या ग्रहों तक महदूद रहे तो इसे इंसाफ का तासुर मुतासिर होता है। ज़रूरी है कि कानून सब के लिए यकसां हो और किसी के साथ इम्तियाज न बरता जाए। इसके अलावा एहतिसाबी अमल को सियासी असर व रसूख से आज़ाद रखना भी ज़रूरी है ताकि इसकी साख बरकरार रहे और अवाम का एतमाद बहाल हो। माशरती रवैयों में तब्दीली भी नहायत ज़रूरी है। जब तक लोग बतौर कौम ईमानदारी, इंसाफ और ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे उस वक्त तक बड़े पैमाने पर तब्दीली मुमकिन नहीं। वालिदैन, असातिज़ा और माशरती रहनुमा नई नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं ताकि वो एक ऐसा किरदार तश्कील दें जो बदनवानी को कबूल न करे बल्कि उसके खिलाफ खड़ा हो। ये बात ज़हनशीन रहनी चाहिए कि करप्शन और माफिया का खात्मा पाकिस्तान में किसी एक फ़र्द या इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम की मुश्तरक कोशिश का तकाजा करता है। ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान में करप्शन और माफिया के खिलाफ जंग एक तवील और मुसलसल अमल है जिसके लिए सब्र, अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। वक्ती इकदाम के बजाय देर पा असलाहत ही इस मसले का हकीकी हल फराहम कर सकती हैं। ये थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अब आखिर पर आपके लिए ये नगमा।

गजल आपने सुनी, वादी की आवाज। आप आकाशवाणी श्रीनगर से समात कर रहे हैं। बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में करप्शन और माफिया के मसले को मजीद वसी नजर में देखा जाए तो ये वाजह होता है कि ये सिर्फ हुकूमती या इदारा जाती मसला नहीं, बल्कि एक हमगीर समाजी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके असरात न सिर्फ मौजूदा नस्ल बल्कि आने वाली नस्लों तक भी मुंतकिल हो रहे हैं। जब एक माशरे में बदउनवानी को बर्दाश्त किया जाने लगे और इसे एक मामूल का हिस्सा समझ लिया जाए तो फिर इसका खातिमा मजीद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस मसले के हल के लिए सिर्फ कवानीन बनाना काफी नहीं, बल्कि जहनी और अखलाकी तब्दीली भी नागुजर।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश होगा गाश्ता रुख। आज का प्रोग्राम सूफी शायर रमजान फुप से मुतल्लिक है। आठ बजकर 30 मिनट हो रहे हैं। सामीन, हमारे अगले ऐलान का ज़रा सा इंतज़ार फरमाइए।

0: या प्रेग्नेंट होती तो उनको भेजते थे। तो ये यूनिट अब बंद हो गया है। इसमें और एक है मिल्क वैल्यू एडिशन। मिल्क वैल्यू एडिशन, चूंकि आप लोगों को पता है कि जो मिल्क वैल्यू एडिशन है, जो हमारा दूध है सरप्लस है, यहाँ पे सरप्लस दूध को हम वैल्यू एडिशन की सूरत में देते हैं। यानी हम इसको मतलब कुछ प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स जो दूध है सरप्लस दूध, उसको हम बाय प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं। मसलन पनीर है, घी है, या मक्खन है, आइसक्रीम भी बनाते हैं, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, खोया वगैरह है। तो इसके लिए हम उन बेनिफिशरियों को जो ये इंटरेस्टेड है उनको हम ये बेनिफिट देते हैं। इसमें 25 लाख लगभग सब्सिडी देते हैं। ये प्रोजेक्ट है 50 लाख का लगभग। तो 25 लाख का
1: पनीर बनाने का
0: यूनिट, उसमें 3-4 यूनिट होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसके लिए हम ये सब्सिडी देते हैं। हमारे पास वो 50 लाख टोटल लाख होता है, 50 लाख टोटल कास्ट प्रोजेक्ट। तो 25 लाख हम देते हैं, उसमें एक गाड़ी भी आती है ताकि वो ट्रांसपोर्ट करे ये बाय प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह। हमारे इस टाइम है हरमैन में एक यूनिट चल रहा है। इसके अलावा हम देते हैं AMCU, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्टिंग यूनिट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली जो भी दूध गाँव में जमा होता है वो एक जगह जमा होता है, जिसको हम ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सेंटर कहते हैं। ऐसी स्कीम है जो FPO टाइप है, FPO फार्मर्स प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो गांव वाले हैं वो दूध लाते हैं, तो उनको अकॉर्डिंग टू फैट परसेंट उनको पैसा मिलता है। इसके अलावा हमारे पास BMC है। BMC का मतलब है बल्क मिल्क यूनिट, जिसमें हम अगर हम कहीं पे हालात खराब है तो हम उसमें ये जो सरप्लस दूध है वो हम कलेक्ट करते हैं, वो उसमें ठीक रहता है, खराब नहीं होता है।
1: क्या वो क्या होता है,
0: बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट। उसमें दूध को हम कूल करते हैं ताकि वो खराब
1: तो ना मशीन होती है।
0: हाँ, मशीन होती है, बहुत बड़ी मशीन होती है, वो टैंक जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम पैसे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्कीम है जो NLM नेशनल लाइवलीहुड मिशन के जरिए हमने NLM ने लगाई है। 45 पशु सखीज जो है वो 45 हमारे पास है। तो वो क्या कहते हैं, उनका दो काम होता है, एक होता है मिल्क रिकॉर्डिंग, यानी वो मिल्क रिकॉर्ड करते हैं। एक गाय, पर्टिकुलर गाय, फीमेल लगाते हैं, फीमेल गाय हमारे पास है, तो उसमें हम दूध, वो कितना दूध देते हैं, क्या दूध देते हैं, सुबह शाम उसकी रिकॉर्डिंग होती है। एक और उसमें आता है राशन बैलेंसिंग, तो वो राशन बैलेंसिंग भी कहते हैं कि मसलन दूध के हिसाब से कितना हम राशन इस गाय को देंगे। तो
1: चारा,
0: हाँ, उसमें कंसेंट्रेट भी आता है और रफेज भी आता है, जो भी होता है। तो उनके लिए भी हम इंसेंटिव देते हैं, 50 रुपीज पर रिकॉर्डिंग एंड 50 मिल्क रिकॉर्डिंग और 50 रुपीज पर राशन बैलेंसिंग। इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है P25 पोल्ट्री रिलेटेड है। ये P25 जो है, इसमें हम ज्यादातर पोल्ट्री बर्ड्स देते थे। पोल्ट्री बर्ड्स हम उसको कहते थे हॉटी पोल्ट्री में हम देते थे 500 बर्ड्स के लिए सब्सिडी। उसमें जो शर्ड बनाता था उसके लिए भी सब्सिडी देते थे, और जो चूजे होते हैं उसके लिए भी सब्सिडी देते थे।
2: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
3: शुक्रिया तजमुल। सामीन, हुकूमत ने IDDS यानी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुतद डेयरी यूनिट कायम किए हैं, जिनकी वजह से जहां दूध की पैदावार में इजाफा हुआ है, वहीं दसियों अफराद को बाइज्जत रोजगार भी फराहम हो चुका है। इसके अलावा जिले में कई पोल्ट्री फार्म भी काम कर रहे हैं, जहां से देसी अंडे और मुर्गे मकामी बाजारों को फराहम किए जा रहे हैं। IDDS और HADP जैसी फ्लैगशिप स्कीमें इन यूनिटों के कायम में अहम किरदार अदा करके मुस्तफीद होने वाले लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। हमारे नुमाइंदे जानिसार अहमद ने IDDS और HADP से मुस्तफीद हुए चंद नौजवानों के साथ बात की, तो उन्होंने इस ताल्लुक से अपने तासरात पेश करते हुए कहा।
4: مجھے ناؤ مشتاق احمد ملک بس روزان ڈسٹرک شوپیان احکام کلورا بہت ان ایمپلائی پہ سی سکیم یہ ایچ ایل ڈی پی تو ہاٹی پولٹری پہ گوس بہ پن کنسر ویٹنری دفتر ون مے یت کھن سکیم مے کر اتن چوز یہ ہاٹی پولٹری سر ات من تم 500 مطلب پوچھ انی تر متعلق دن مجھے سکیم کہ اتھا یوتا سبسڈی نائٹ شیلٹر خطر بنا ہاٹی پولٹری پہ اگر تھی پوچھ انو ات 50 ساس الگ تتھ دِتِکھ 50,000 روپیہِ الگ حظ تہٕ یُس زن یہِ نایٹ شیلٹر اوس اتھ دِتُکھ 1,00,000 روپیہِ 1.5 لچھ روپیہِ آو سبسڈی حظ مےٚ حظ آو یہِ آیڈیا کہِ مےٚ اوس باغ تہٕ مےٚ کٔر کٲم حظ مےٚ بنوو اتٮ۪ن یہِ شیڈ یِہِنٛدِ خٲطرٕ مےٚ کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ ایپلاے مےٚ آو ایپروٗ مےٚ آو مطلب یُس مےٚ کنسٲرٕن یۄس اوس تِہُنٛد تہِ روٗد صاف بیٚیہِ خاص کر یُس مطلب یہِ پولٹری ڈیولپمنٹ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विद्युत हलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कोई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
5: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे

0: ये प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए।

0: साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहातार हट आशार्य अठक मीटर ते FM2 अखतत्र आशार्य 5 मेगाहर्ट्ज़ पेट रोज संजे 9 बजे सामीन वलियो कशर मौसी की बोजो।

0: डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 77.8 मीटर तक FM2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट रोज संजे 9 बजे सामीन वलो कशर मौसीकी बोजो जहां अराजाम बाजने आवाज मज बोजो गौड़ कला में नसीम शफाई।

0: FM 103.5 MHz पर 9:15 हो रहे हैं। आइए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और वियतनाम ने तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम ने दोनों मुल्कों की मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ इकदामात का ऐलान किया है। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया है। मगरी बंगाल में बीजेपी हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते के रोज होगी। अमरीका और ईरान जंग को खत्म करने और आबनाए हुरमुस के रास्ते बिला रुकावट नकल व हमल की खातिर एक माहदे के करीब हैं। और ताशकंद में 15 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 30 में से 27 तमगे जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, नायाब मादनियात, तिब्बी साजो सामान, पब्लिक सेक्टर ऑडिट, डिजिटल अदायगी निज़ाम और सकाफत व सयाहत के शोबों में मुख्तलिफ मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तो लाम के दरमियान बातचीत के बाद इन माहदों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात के अलावा बाहमी ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम के सदर की जिम्मेदारी संभालने के एक महीने के अंदर सदर तोलाम का भारत का पहला सरकारी दौरा इस बात को जाहिर करता है कि वो भारत वियतनाम ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका विरासत को जिंदा रखने के लिए भारत वियतनाम के कदीमी चंपा तहजीब के माइसन और नेहान ताओ मंदिरों का अहिया कर रहा है।
2: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
1: उन्होंने कहा कि मशरिकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की पॉलिसी और विजन सागर के तहत वियतनाम भारत के लिए एक अहम सुतून है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने और दहशतगर्दी से निमटने के खातिर भारतीय अवाम के साथ यकजहती का इजहार के लिए वियतनाम का शुक्रगुजार है। वियतनाम के सदर तोलाम ने कहा कि वियतनाम 10 बरस की जामे कलीदी शराकतदारी समेत भारत के साथ 50 साल ताल्लुकात के नताइज को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि तरफेन दुनिया की मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल के अजाले की खातिर बेहतर नजरिए और तरक्याती हिकमत अमलियों के साथ करीबी राबते में रहेंगे। आज नई दिल्ली में बाद में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मशरक़ी उमूर के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर तोलाम के दरमियान बातचीत में भारत और वियतनाम दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक बढ़ाने के खातिर मुत्तफिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने यहां ज़रई अशिया समेत बाजार तक रसाई में सहूलत पैदा करने के सिलसिले में भी इत्तेफाक किया है। अद्वियात की भारतीय सनत की तरक्की को तस्लीम करते हुए तरफेन ने 2027 से वियतनाम की अवामी सेहत देखभाल के खातिर भारतीय कंपनियों की शमूलियत के इम्कान से भी इत्तेफाक किया। जनाब कुमारन ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी इदारा जाति राबतों की हौसला अफजाई के साथ साथ मालूमात, तहकीक और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले के फरोग पर भी रजामंदी जाहिर की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा जनरल फैन वैंग जियांग के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं की बातचीत में भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि हालिया पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत सूरतेहाल की अक्कासी होती है। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकतदारी

0: Gaştaruk. Ezik programos maruf sufi şair Ramzan Fofis mutallik. Raviyes Fayyaz Ahmed Fayyaz de Gulam Rasul Ahun. Peşkeş Gulam Rasul Ahun. Isha Akashvani Hun Srinagar Station.
1: Commercial Broadcasting Service Srinagar. आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शब के

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शब के 10 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं उर्दू गज़लों का फरमाइशी फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो महफिल गज़ल। प्रोग्राम पेश करेंगी इरम कुरैशी।
2: गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना,
3: जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना।
4: फैसला तुमको भूल जाने का।
2: महफिल गजल,
3: गजलों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम।
4: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
3: महफिल गजल सजा करती है बुधवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। दिल की महफिल में चिरागों को जगाया जाए, आज फिर दर्द को नगमों में सुनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो महफिल गजल, जहां हर लफ्ज में एहसास है और हर सुर में जज्बात। ये खास प्रोग्राम हर मंगलवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक रिकॉर्ड किया जाता है और आप तक पहुंचता है हर बुधवार रात 10 बजे, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी श्रीनगर से। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट इरम कुरैशी, लेकर हाजिर हूं एक और खूबसूरत महफिल, जहां आपकी फोन कॉल्स, आपकी फरमाइशें और गजलों का जादू एक साथ बुनता है एक हसीन समा। तो आइए सुनते हैं आज की पहली कॉल। हेलो महफिल गजल।
5: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
3: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से?
5: मैं पुणे से बोल रहा हूं, अकरम
3: जी। अकरम जी, कैसे हैं आप?
5: मैं ठीक हूं मैम। मैं आपका प्रोग्राम बहुत सुनता हूं, मेरे साथी भी हैं, हम भी बहुत सुनना इसे पसंद करते हैं।
3: हाँ,
5: तो अक्सर हम सुनते रहते हैं कभी कोई ना कोई हम रेडियो पे। तो आज की हमारी फरमाइश है कि आख को चाहिए एक उम्र सर होने तक जगजीत सिंह की गजल है ये।
3: जी अकरम, बिल्कुल आपको ये गजल जरूर सुनवाएंगे। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं?
5: जी हाँ, मैं स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ।
3: बहुत अच्छी बात है, स्कॉलर के साथ साथ आप गजलें भी सुनते हैं। तो आज आपके साथ कौन दोस्त हैं जो ये गजल आपके साथ सुनना चाहेंगे?
5: जी मैम, ये मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे स्कॉलर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं।
3: जी जी,
5: तो मेरे साथ हैं महमूद अहमद
3: जी,
5: सरफराज अहमद
3: जी,
5: और आशिक हुसैन और माजिद हुसैन।
3: चले अकरम, आप सुने अपने दोस्तों के साथ ये प्यारी सी गजल।
5: जी जी, थैंक यू, शुक्रिया।

0: हेलो, महफिल गजल।
1: क्या हाल है मैम? आप ठीक है जी?
0: बिल्कुल। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मेरा नाम तफजुल है और मैं सोग्रा से कॉल कर रहा हूँ जी। तफजुल इस्लाम
0: जी। तफजुल, क्या करते हैं आप
1: जी? मेरा ऑप्टिक्स का शॉप या रिटेल चल रहा है जी सोग्रा में।
0: अच्छा,
1: जी
0: तफजुल, तो आज
1: मैम मैं ना बहुत टाइम से कॉल कर रहा हूँ लेकिन कभी कनेक्ट हो नहीं पाता था, बहुत दिक्कत के बाद आज फाइनली आई एम सो हैप्पी कि मेरी अभी कॉल लगी मैम।
0: चलें, बहुत अच्छी बात है कि आज आपकी कॉल लग गई। तो कौन सी गजल आज आप सुनना चाहेंगे?
1: जी जी यस मैम, मैं पंकज उदास की ऐ गम जिंदगी सुनना चाहूंगा, वो मेरी बड़ी फेवरेट है और मैं कुछ डेडिकेट अपने फ्रेंड्स को वो करना चाहूंगा प्लीज।
0: तो उन दोस्तों का नाम बताइए जिनके लिए आप ये डेडिकेट करना चाहेंगे।
1: जी जी, उनमें से एक ही शादी हो रही है, उसको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। मुनीर अहमद रतन सिखबाग में रहते हैं, लाल बाजार में, उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। और या क्या बोलते हैं, अब्दुल कादिर, वो भी एक फ्रेंड है, उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: चलें तफजुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए ये प्यारी सी गजल।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: महिला, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ
1: जी जुनैद, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में।
0: जी। मैं गजल सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सी गजल सुनना चाहेंगे जुनैद आप?
0: गुलाम अली साहब की आवाज में, हम तेरे शहर में।
1: बिल्कुल, आपको ये गजल सुनवाएंगे। तो जुनैद, आप गजलों के शौकीन हैं?
0: जी जी जी मैं 10-15 साल से गजलें सुन रहा हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है। तो आपके साथ कौन आज ये गजल सुनेंगे?
0: मेरे साथ मेरी कोलीग्स है,
1: जी
0: एजाज साहब है यहाँ पे, मिस्टर राकेश दर है, मिस्टर मुनीर साहब है, मिस्टर दूसरे साहब यहाँ पे, फयाज साहब है, हम सब सुनना चाहते हैं गजल।
1: जुनैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए अपनी ये प्यारी सी गजल।

0: दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ जाता है। अल्लाह ने चाहा तो फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज व नासिर।
1: गजल उसने छेड़ी मुझे सांस देना,
2: जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना।
3: फैसला तुमको भूल जाने का,
1: महफिल गजल,
2: गजलों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम।
3: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
2: महफिल गजल सजा करती है बुधवार रात 10 बजे से 11 बजे तक।

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे उर्दू गज़लों का फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम हेलो महफिल गज़ल। प्रोग्राम पेश कर रही थी इरम कुरैशी। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 MHz पर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा

0: अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और $ अरबों के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the Mi Son and Nam Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization.

सुबह का ही प्रोग्राम पेश होगा सुबह 6:35 पर। प्रोग्राम पायम सुबह आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। मकामी अखबारत की सुर्खियाँ पेश होंगी सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर हमारे शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम शहर शहर मंजर पेश होगा। सूफी सदा प्रोग्राम नशर होता है सुबह 10 बजे। कल का प्रोग्राम सूफी शायर लाला आरगिम से मुतलिक है। पेशकश गुलाम रसूल आखून। इंटरएक्टिव लाइव शो पेश होगा सुबह 10:30 पर। उमर फारूक भट्ट और साथी सूफियाना मौसीकी में मकामी दुगा पेश करेंगे सुबह 11:30 पर और मकामी रिहावी दिन में 2:30 पर। बजमिनिस्वा प्रोग्राम दिन में 12:40 पर पेश होगा। 1:10 पर NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नश्र होगा उमंग। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे पेश होगा। गुलाम रसूल भगत यार और साथियों की आवाज़ में आप चलन तो सुनेंगे 4:45 पर। कलाम है भगत यार का। गोजरी प्रोग्राम नश्र होगा शाम 5 बजे। शाम 6:05 पर प्रोग्राम पेश होता है गर्मी बान हिंद खतरे। हालत हजरा का प्रोग्राम शहर भी नश्र होगा शाम 7 बजे और वादी की आवाज़ प्रोग्राम रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता है। समीन ये थी तफसील हमारे कल नशर होने वाले प्रोग्रामों की। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 MHz पर ये आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज है। शब के 11:12:40 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब यहीं पर बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लेकर कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

बिल्कुल, और हम भी हैं आप ही के। जी हाँ, गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 MHz। ये गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे टू गोवा से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत, और इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्णन ने।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही, और राखी बिल्कुल आ चुकी है स्टूडियो में, और निशिगंधा लेकर आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल बने रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। और अब आप अपने दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर

0: असर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।

0: मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
1: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
2: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैंड्रिक क्लासन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The president said, The elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation, but also contribute to peace and prosperity in the region. She said that India and Vietnam share a deep friendship rooted in historical

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

अलग अलग फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। बूंदों की हल्की थपकियों से सजी ये भीखी भीखी रात, आधी रात का ये सन्नाटा जैसे कुछ कहने को बेताब है। हवा में खुली मिट्टी की खुशबू दिल के किसी कोने को छू जाती है और ऐसे में अगर साथ हो कुछ सुरों का तो हर एहसास और भी

गहरा हो जाता है। इस भीगे मौसम में, इस आधी रात के खामोश लम्हों में खुद को खो देते हैं कुछ सुरीले गीतों के साथ, जहां हर धुन एक कहानी कहती है, हर लफ्ज किसी की याद को जगा देता है।

अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी ये गीत हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी किसी अधूरी बात, किसी पुराने ख्वाब की याद दिला जाते हैं। तो बस इस पल को थाम लीजिए, बारिश की इन बूंदों के संग दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए और इन सुरीले गीतों में डूब जाइए, क्योंकि ऐसी रातें बार बार नहीं आती।

ये इश्क नहीं आसान फिल्म से आपने ये गीत सुना मनहर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम यहां पर आपको करेक्ट मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहूंगी, ये गीत अनवर ने गाया है और ये गीत है ये इश्क नहीं आसान फिल्म से।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दुनिया फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। ये वो वक्त है जब गीत सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हर धुन बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। भीगा सा मौसम और इसके बीच चलती एक नर्म सी मेलोडी,

हर जाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। गीत चलते रहते हैं एक के बाद एक, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, फिर भी हर धुन जानी पहचानी सी।

रहती है। कभी लगता है जैसे ये रात किसी का इंतजार कर रही है, और कभी यूं लगता है कि इसे किसी का इंतजार ही नहीं है, ये अपने आप में पूरी है। तो आज इस आधी रात को किसी कहानी में मत बंधिए। बारिश की इस हल्की हल्की बूंदों में, इनकी लय में और इन सुरीले गीतों के साथ जो बिना वजह भी दिल को छू लेते हैं, इनके साथ बहते चले जाइए।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। आधी रात का ये ठहरा हुआ लम्हा, जहां हर चीज जैसे अपनी रफ्तार भूल चुकी है, खामोशी इतनी गहरी है कि दिल की हल्की सी धड़कन भी सुनाई देती है, और उसी खामोशी में कहीं धीमे से बजते हैं कुछ सुरीले गीत। ये गीत शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल के करीब बैठ जाते हैं, जैसे कोई बिना बोले साथ निभा रहा हो।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। जगजीत सिंह ने इसका गीत संगीत दिया और इस गीत को लिखा इंदीवर ने। वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर, कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का

जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral

वक्त हुआ है 1:10 और 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

शबाब फिल्म का गीत आपने सुना, इसे लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत दिया नौशाद ने। जोगन बन जाऊंगी पिया तोरे कारण, जैसे बोल सुनते ही दिल अपने आप एक अलग है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, एक एहसास है, समर्पण का, मोहब्बत की गहराई का। इसमें जो भाव है ना, वो बहुत मासूम और सच्चा है कि किसी के प्यार में इंसान अपनी पूरी दुनिया बदल देने को भी तैयार हो जाए। जोगन बनना यहाँ त्याग और भक्ति का प्रतीक है, जैसे प्यार कोई पूजा बन गया हो।

अनारकली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। इस एक लाइन में ही पूरी जिंदगी की फिलॉसफी छुपी है कि असली जीना वही है जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी अपने के लिए जीने लगे। प्यार में खुद को खो देना यहां हार नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास बन जाता है।

अंदाज फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। इसे मजरूह ने लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। उठाए जा उनके सितम और जिए जा, इस पंक्ति में जो दर्द है वो बहुत गहरा है। प्यार में मिलने वाले सितम यानी तकलीफों को कोई भी इंसान चुपचाप सहता जाता है, क्योंकि उसके लिए वो मोहब्बत ही उसकी जिंदगी बन चुकी होती है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि उस दौर के गीतों में दिखने वाला बे इंतहा समर्पण है, जहां मोहब्बत में शिकायत कम और सहने की ताकत ज्यादा होती थी।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने ये गीत सुना। रफी और लता की आवाज में शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

देवदास फिल्म का गाना आपने सुना, मुबारक बेगम की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। वो ना आएंगे पलटकर, इस पंक्ति में जो एहसास है वो बहुत गहरा है। एक ऐसी सच्चाई जिसे दिल मानना नहीं चाहता कि कुछ लोग कुछ रिश्ते एक बार चले जाएं तो फिर लौटकर नहीं आते। पुराने गीतों की खूबसूरती यही है, वो सिर्फ दर्द नहीं देते बल्कि उस दर्द को एक सुकून भरी आवाज भी दे देते हैं जिससे दिल हल्का हो जाता है।

गीतिया नौशाद ने। मोहे भूल गए सांवरिया, एक ऐसी विरह व्यथा जहां प्रेमी की याद ही सब कुछ बन जाती है, और जब वही सांवरिया भूल जाए तो दिल जैसे खाली हो जाता है। मोहे भूल गए सिर्फ शिकायत नहीं है, ये एक बेबस पुकार है जिसमें इंतजार है, तड़प है और एक मासूम सी उम्मीद भी कि शायद वो लौट आए।

संगीत दिया राम गांगुली ने। इस गीत में कितनी गहराई छुपी हुई है, जैसे इंसान जी तो रहा है लेकिन भीतर से कहीं खो चुका है। ये गीत हमें उस एहसास से जोड़ता है जहां दर्द इतना अपना हो जाता है कि वो अलग से महसूस भी नहीं होता, बस जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। पुराने नगमों की यही खासियत है, वो हमारे अनकहे जज्बातों को आवाज दे देते हैं और हम बस चुपचाप उन्हें सुनते रहते हैं।

0: मैंने शायद
1: बरसात की रात फिल्म का ये गाना आपने सुना रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कभी कभी कुछ चेहरे कुछ मुस्काने हमें यूं ही नहीं छू जाती, शायद वो किसी पुराने ख्वाब का हिस्सा होती हैं या दिल के किसी कोने में पहले से बसी हुई कहानी।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वाकई तस्वीर चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो उस हंसी की गर्माहट, उस आवाज़ की मिठास और उस साथ के सुकून को कभी कैद नहीं कर सकती।

संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसएन त्रिपाठी ने। कभी कभी यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना, ना कोई आवाज देती हैं ना कोई दस्तक, बस चुपचाप दिल में उतर जाती हैं।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। जब प्यार किया तो डरना क्या, यानी अगर दिल से मोहब्बत की है तो फिर किसी का डर कैसा, न समाज का, न हालात का, न अंजाम का।

वक्त हुआ है 1:58 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान

होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने

0: करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। इस घटना के संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bouva in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. West Bengal BJP leader Suvendu Adhikari's personal assistant Chandranath Rath has been shot dead in Doharia area of Madhyam Gram. Eyewitnesses say bike-borne assailants followed his car and opened fire.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

दिल आखिर दिल है, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। अनिल मोहिले ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। जज्बात इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो दिखते नहीं लेकिन हर पल महसूस होते हैं।

खानदान फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, किसी अपने का

गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। हर पल को जी लो, हर एहसास को महसूस कर लो, क्योंकि जो अभी है

वही सबसे कीमती है। कभी ये पल खुशियों से भरा होगा, कभी थोड़ा सा उदास भी, पर हर पल अपनी एक कहानी छोड़ जाएगा।

सौदागर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

वक्त हुआ है 2:34 और ठीक 11 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सवेरे वाली गाड़ी, लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वो दिन वापस जरूर लौटेंगे, ये एक यकीन है, एक उम्मीद जो दिल को थामे रखती है। हर गुजरा हुआ पल कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा रहता है।

जमीन आसमान। इस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। दिल देना कोई सौदा नहीं होता, ये तो जैसे अपनी दुनिया किसी और के हवाले कर देना है। और जब ये कदम घबराकर उठाया जाए तो उसमें मासूमियत भी होती है और सच्चाई भी।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। रात का अपना एक अलग ही जहां होता है, धीमा, गहरा और एहसासों से भरा। ये रातें कहानी कहती हैं, कभी मोहब्बत की तो कभी इंतजार की। वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को

0: देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bowa in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In West Bengal, in a shocking incident, Chandranath Rath, a close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyamgram. According to reports, bike-borne attackers opened indiscriminate fire at his car in the Dhoria area. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. According to sources,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। रात सुहानी है, हवाओं में मीठी सी कहानी है, तेरे ख्यालों ने आज फिर दिल को चुपके से छुआ है, हर सितार जैसे बस तेरा ही नाम गुनगुना रहा है।

चांदनी भी शर्मा जाए जब तुम मेरे साथ हो, ये रात और भी हसीन हो जाए तेरे एहसास से, जैसे हर पल मैं बस प्यार ही प्यार बसता रहे तेरे साथ से।

तेरे प्यार का असर यूं ही हर सांस में बना रहे, तेरी हंसी मेरे हर ख्वाब की रोशनी बन जाए, बस तुझ में ही सिमट कर ये दिल सुकून पाता है।

दिल के दरवाजे आज जरा खुल जाने दो, इन हवाओं में मोहब्बत का रंग थोड़ा घुल जाने दो, शायद कोई अपना फिर से दस्तक दे जाए।

कुछ यादें होती हैं जो रात के सन्नाटे में और भी करीब आ जाती हैं। आज की ये महफिल उन्हीं एहसासों के नाम, जहां हर धड़कन में छुपा है किसी का नाम।

ओ मेरे महबूब, चांद और तारे आज गवाह बन गए तेरे मेरे इस खूबसूरत से रिश्ते के। ये रात भी मुस्कुरा उठी है, ये हवा भी कुछ कह रही है। दिल की हर धड़कन में अब सिर्फ तेरी ही सदा रह गई है।

और इस समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान करेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशघम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने

0: अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को कल 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट्स से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Meanwhile, President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening and hosted a banquet in his honor. President Murmu said elevating India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will boost bilateral cooperation and contribute to regional peace and prosperity. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bova in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In West Bengal, in a shocking incident, Chandranath Rath, a close aide of BJP leader Suvendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram. According to reports, bike-borne attackers opened indiscriminate fire at his car in the Dohoria area. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadeb Behra, sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. According to sources, 8 attackers on 4 motorcycles followed the car and ambushed it. Soon after the incident, several BJP leaders visited the hospital. Meanwhile, BJP leaders have blamed the Trinamool Congress and accused Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee of involvement. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Vishwanath Arley.

और समय हो गया है 4:11 और 5 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म दूर का राही फिल्म से, प्यारा सा गीत किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाज़ में।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म संगम से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है अरुणिमा. आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत. फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन.

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से नितिन मुकेश की आवाज। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम अरुणिमा को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म धरती से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत अवतार फिल्म से किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और इस गीत के संगीतकार हेमंत कुमार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय कह रहा है कि अनुमति ले ली जाए 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ इजाजत। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मुद्रा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्लेकर से मुलाकात की है। टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बौवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे

समय हो गया है 5:11 और 4 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और एक बार आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है हरिओम शरण ने।